0: इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुख के साथ इत्तला की जाती है कि तो वातानांदी फीजी के मरहूम इनायत के बेटे और ऑस्ट्रेलिया के कमरुल निशा के शोहर मोहम्मद रियाज मेहनाज रऊफ शहनाज बी के वालिद रऊफ फराज और फातिमा शेली के फादाइन लोग, फीजी और ऑस्ट्रेलिया के मरहूम मोहम्मद शफीक मोहम्मद हकीक अमीरुल अजीजुन हुसना अफरोज और नाजमा के भाई रेड बैंक प्लेन्स के मोहम्मद रफीक का इंतकाल आज सुबह अस्पताल में हो गई। जनाजे को दफनाने के लिए आज दारा मस्जिद से 1:30 PM माउंट ग्रेवर्ट सेमेट्री ले जाया जाएगा और नमाज जनाजा ठीक 2 बजे अदा की जाएगी। आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि मरहूम के लिए दुआए मगफिरत करें कि अल्लाह पाक मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन।
1: रेडियो 1701 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi guys, I'm Madhvi from the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Salman Khan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani
11: से। To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

चर्च प्रेजेंट्स स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू, फॉरेस्ट लेक, क्वींसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करे मेविस 0418745179, राज 0407177117।

0: मैंने सोचा कि चलो मैं क्यों ना आपका साथ दे दूं। मैं शशि जोखन आपके साथ जुड़ चुकी हूं और पूरे 12:30 बजे तक मैं आपका साथ दूंगी, ठीक है? सो आप भी इसी तरह मेरा साथ दीजिए। मैं कहना चाहती हूँ आपको नमस्कार, कैम छो, सात श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। और चलो एक गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद और बातें। हाँ जी, लगता है कि कुछ गड़बड़ी शायद हो चुकी है, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, देखना है, मगर नहीं, ठीक नहीं है। चलो ये गीत सुनते हैं इन द मीन टाइम।
1: A son is a son till he gets himself a wife, but a daughter is a daughter all her life.
0: हैप्पी फादर्स डे। जितने भी भाई लोग हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं, जितने भी फादर्स सुन रहे हैं, आप सभी को हैवी हैप्पी फादर्स डे।

उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये गीत। और एक बार फिर मैं कहती हूँ आप सभी को, सभी जितने भी फादर्स रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं आज, एंड ऑफ कोर्स जैसे हमने पहले कहा कि हमारा साथ आज फिरोज भाई किसी कारणवश नहीं दे पा रहे हैं, और एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस मैं आपका साथ दे रही हूँ जी। तो बातें हो रही हैं फादर्स के बारे में, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो पिता होते हैं ना, पिता शब्द, एक्चुअली पिता शब्द कितना पवित्र है ना पवित्र, बहुत ही पवित्र है। जो संतान का पालन और रक्षा करे उसे पिता कहते हैं, ठीक है, उसे पिता कहते हैं। और संतान ही क्यों, सारे घर की पालन और रक्षा का भार पिता पर होता है। वैसे तो देखा जाए तो ज्यादातर हम मदर्स डे ये सोचते हैं, उनको ज्यादा भाव दिया जाता है, मगर मैं तो कहूंगी कि फादर्स डे भी उतना ही स्पेशल है जितना कि मदर्स डे होती है। तो घर के लिए सभी आवश्यक सामग्रियों को पिता ही जुटाता है, ठीक है। आजकल तो वैसे माँ भी बाहर जाती है, काम वगैरह करती है, सब कुछ निपटाती है, मगर फिर भी जो पिता के ऊपर जो बोझ होता है ना, भार होता है, वो ये होता है कि घर की जो देखरेख वो पिता करते हैं। सदियों से ये चलती आ रही है, और घर की आवश्यक जो जितनी भी आवश्यक चीजें होती हैं उसकी पूर्ति करना पिता का कार्य है। शायद आजकल इसकी जो सोच है ये थोड़ा सा बदल गया है, मगर जो फादर्स होते हैं उनसे आप पूछिए कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, तो वो आपको बताएंगे। पिता का कर्तव्य है कि घर की किसी भी वस्तु की कमी ना आने दे, ये पिता की बात होती है। और घर में अन्न धन कपड़ा आदि भी कि ये सभी चीजों की कमी ना हो, ये पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता ना हो एज अ फादर, तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। सो इसके लिए पिता को धन कमाना आवश्यक होता है, ठीक है। सो आप इसे जरूर याद रखिए।

हाँ जी, ये भी बहुत ही प्यारा सा गीत. हाँ, आई होप आप एंजॉय किए होंगे. तो देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है एंड इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल डे, वेरी इम्पोर्टेंट डे, क्योंकि हमारे जीवन में पिता का होना बेहद इम्पोर्टेंट होती है. जैसे कि एक माँ का प्रेजेंस होना इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए, उसी तरह एक पिता का भी साथ होना इट्स वेरी वेरी स्पेशल एंड वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि पिता से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं. ठीक है, यूं तो माता पिता बनने का सौभाग्य हर प्राणी को मिलता है, मगर देखिए, बच्चों की सेवा का शुभ अवसर बड़े भाग्य वालों को नसीब होता है. ठीक है, ये बहुत ही नसीब वालों को मिलता है. और जब ये आपको ये उपहार मिलते हैं ना जीवन में, तो उसको वैल्यू करनी चाहिए एज अ फादर एंड एज अ जो बच्चा होता है, उनको दोनों को इस रिलेशनशिप की वैल्यू करनी चाहिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये दिवस ढेर सारे उपहार लाकर पिता के सामने रख देने की नहीं, बल्कि हमें ये याद दिलाने आता है कि पिता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है. ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कि जैसे पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है अपने बच्चों के प्रति, तो ऐसे एक बच्चे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपने पिता के प्रति वो क्या है, ये हमारा धर्म क्या कहती है, हमारी जिम्मेदारियां क्या है. केवल एक दिन उन्हें ढेर सारा प्यार देने से, उपहार देने से हमारा कर्तव्य पूर्ण नहीं हो जाता है. ठीक है, तो हमारा धर्म ये कहती है कि उनकी सेवा में हमें सदा खड़ा रहना चाहिए. हाँ, हमारी सिचुएशन अलग अलग होती है, सभी की सिचुएशन अलग अलग होती है. हर बार हम अपने पेरेंट्स के पास या अपने बच्चों के पास नहीं रह पाते हैं, क्योंकि समय अब बदल गई है ना. सभी लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं, बच्चे दूर दूर रहते हैं, माता पिता दूर रहते हैं, तो हर बार साथ नहीं रह पाते हैं. मगर उनसे बातचीत करना, उन्हें फोन करना, कभी काल उनसे मिलने जाना अगर आप दूर रहते हो, विदेश में हो, तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है. चलो एक और गीत सुनते हैं. ये तो चंद बातें थे और कुछ ही देर में हम बताएंगे कि पिता के लिए जरूरी बातें क्या हैं. ठीक है, मगर अभी तो आप ये गीत सुनिए.

हाँ जी, आप सुन रहे हैं ये एक स्पेशल कार्यक्रम जो फिरोज जी लेकर आते हैं आपके लिए, मगर आज फिरोज जी नहीं है तो मैं आपका साथ दे रही हूँ। एंड व्हाट अ स्पेशल डे, आज फादर्स डे है तो मैं फिरोज जी को भी याद कर रही हूँ और कार्यक्रम में शामिल कर रही हूँ, जहाँ से भी वो कार्यक्रम जहाँ पर भी वो हो तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारा साथ दे रहे हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं। हाँ जी, तो हमने जैसे पहले आपसे कहा कि जैसे बच्चों की जिम्मेदारी होती है अपने फादर्स के प्रति, तो पिता की भी जो जिम्मेदारी होती है और खास तौर से पिता की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने वो एक अच्छे पिता बने और अपने बच्चे को ढेर सारा प्यार दें, उनमें विश्वास डालें कि वो बड़े होकर एक अच्छा इंसान बने। और हमारे बच्चे सिर्फ हमारे जैसे कि ऐसा मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये हम ही से तो सीखते हैं ना पहले, तो जब एक बेटा है तो खास तौर से जो पिता है उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बेटों को अपने बच्चों को क्या क्या सिखाए, कैसे सिखाए ताकि वे बड़े होकर खुद एक अच्छा इंसान बन सके। तो पिता के लिए कुछ जरूरी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फादर्स टू नो अबाउट दिस, अगर उन्हें शायद ना पता हो। कुछ फादर्स ऐसे होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाते हैं और वो भी ठीक है, शायद उनकी जो परवरिश होगी वो इस तरह ना होगी, सो इसीलिए उन्हें शायद पता ना हो। तो देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आपके पास बच्चा हो, बच्चे हो जाते हैं, आप पिता बन जाते हैं, तो बच्चों का इंतजार करना सीखिए, ठीक है? बच्चों का इंतजार करना सीखिए। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं या कहीं आउट गए हुए हैं तो उनका इंतजार कीजिए, उन्हें महसूस कराइए कि आप उनके लिए बहुत स्पेशल है, और आप कहीं पर अगर बाहर जाते हो तो उनको चिंता लगी रहती है, तो ऐसा करने से बच्चों के दिलों में वो जागेगी, प्यार जागेगी आपके प्रति, ठीक है? वो महसूस करेगा कि हाँ मेरा कोई ख्याल करता है। माँ तो करती ही रहती है मगर पिता की ये जिम्मेदारी होती है कि बच्चों का इंतजार करना सीखे। दूसरी बात है उनको प्रेम करना सिखाए, बच्चे को प्रेम करना सिखाए कि कैसे प्रेम किया जाता है दूसरों से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं एक मेल और फीमेल में बहुत अंतर होती है ना। जो गर्ल्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनको वो फेमिनिन जो फीलिंग होती है वो हर बार आती है, बट बच्चे लोग जो पुरुष होते हैं वो जरा खींचे खींचे रहते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक फादर उनको कैसे रिलैक्स हुआ जाता है, कैसे प्यार किया जाता है, ये सिखाना चाहिए उनको, चाहे अपने बहनों के साथ हो या अन्य लोगों के साथ हो, ये अपने परिवारजनों के साथ हो, ये उनमें डालना चाहिए वो प्रेम। और उनकी छोटी छोटी बातों में रुचि ले, कहानी कविताएं उन्हें सुनाए, अगर आपको ये सब आती हो तो ये उन्हें आप सिखाएं, उन्हें सुनाए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। कुछ गुनगुनाएं उनके साथ ताकि वो भी एक ऐसा बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा आदमी बन सके, अच्छा इंसान।

उन्हें लगेगा कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है घर पे, तो वो भी हर बार घर आने के लिए लुक फॉरवर्ड करे। ठीक है, अगर आप काम वगैरह करते हो तो वो ठीक है, मगर नौकरी से जब आप वापस आते हो तो बच्चा को ये महसूस होना चाहिए कि मेरे घर पे मेरा पिता भी इंतजार कर रहा है। ठीक है, और स्कूल जाने से पहले गुड डे और सोने से पहले गुड नाइट का फॉर्मूला आप अपनाएं, उन्हें ये जरूर कह दे। कभी कभी कुछ कुछ पिता बहुत सख्त होते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना आता है, मगर करिए जरूर, उन्हें कहिए गुड नाइट या अच्छा चलो सुबह मिलेंगे या गुड डे, ये सब। होमवर्क में मदद करें, अगर स्कूल से होमवर्क लेकर आए, ज्यादातर माताएं ये करती हैं, मगर पिता को भी हाथ बटानी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सप्ताह में एक बार उन्हें बाहर लेकर जाए, ये बहुत ही स्पेशल है। और अचानक स्कूल पहुंचकर कभी हो सके तो बच्चों को सरप्राइज भी करनी चाहिए, मगर हर बार तो ये मुमकिन नहीं है, मगर करिए। अगर फाइनल या कुछ प्राइज गिविंग डे हो या कुछ भी हो स्कूल में, तो जरूर जाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, यानी कि रोल मॉडल बनने के लिए। रोल मॉडल बनने के लिए ये भी एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक अच्छे रोल मॉडल बनने के लिए उनकी जो माँ है, बच्चे की माँ है, उनका आदर करना सीखिए। आप अगर खुद आदर करेंगे तो आपको देखकर आपका बच्चा भी आदर करना सीखेंगे, आप उन्हें आदर करना सिखाइए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिर्फ पिता ही नहीं, एक आदर्श व्यक्ति भी बनने के लिए कहिए। अनुशासन का पाठ पढ़ाए और जिम्मेदारियां सौंपे, छोटी छोटी जिम्मेदारियां बच्चों को सौंपे कि चलो आज आप ये ड्यूटी आपको देता हूं, आप ये प्लीज कर दीजिए हमारे लिए। थोड़ा गार्डनिंग वगैरह भी सिखाइए, ये सब अच्छी बातें हैं बच्चों को, ताकि वे जब बड़े होकर अपना घर गृहस्थी बसाएंगे तो ये करना उनको आएगा। ठीक है, और बच्चों को छोटी छोटी गलती का अनदेखा ना करें और उन्हें उनकी गलतियों का एहसास जरूर कराएं। मारपीट करके नहीं, अगर आप विदेश में रहते हो तो बहुत से देशों में आप हाथ नहीं उठा सकते हैं बच्चों पर, सो इतना आप जरूर याद रखिए। ये थी कुछ छोटी छोटी बातें, आई होप यूल टेक इट ऑन बोर्ड। फिल्म अकेले हम अकेले तुम से ली गई है नगमा। ये फिल्म एक्चुअली आमिर खान इस फिल्म में दिखे थे, उनके साथ मास्टर आदि इस सॉन्ग में।

जी आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी का ये एक बहुत ही स्पेशल कार्यक्रम जो ऑफ कोर्स लेकर आते हैं फिरोज भाई। तो देखिए, मैं शशि जोखन आज आपका साथ दे रही हूँ, ठीक है ना? तो चंद मिनटों के लिए हमारा और आपका साथ रहेगा और फिर शाम को 5 बजे से 7 बजे तक एक बार फिर मैं दोबारा आऊंगी एक रंगीन शाम आपके नाम लेकर, आप उसमें भी जरूर साथ दीजिए। तो देखिए, बातें हो रही हैं पापा के बारे में आज, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने जो फादर्स होते हैं उनको स्पेशल ढंग से याद किया जाए। तो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, ये गीत तो आप सुने ही होंगे ना, कयामत से कयामत तक का ये गीत, और आज भी युवा बच्चों की जुबान से सुनाई पड़ता है कभी कभी, ठीक है? और इसी गीत के साथ एक दृश्य उपस्थित होता है जिसमें पिता के सामने है कई ऐसे एहसास अपने बच्चे को लेकर, तो ये एहसास की अनेक अनेक जो होते हैं प्यार की अमित छाया आप कह सकते हैं, जो एक एल्बम की तरह हम पलटते रहते हैं, पलटते जाते हैं, और जन्म से लेकर बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं और युवावस्था में, उससे फिर वृद्ध अवस्था, सभी सभी में अनेकों ऐसे अनुभूतियां होती हैं। और इस एल्बम में कुछ दृश्य बार बार ऐसे दिखाई जाते हैं जिसमें दुलार करते पिता सड़क पार कर आते हैं, पिता आपके साथ आपकी शरारतों में सहभागी होते हैं पिता, और अपने कितने दृश्य है इस फिल्म में जिसके भीतर से आपका बचपन झलकता है। सो हमने सोचा कि चलो ये गीत आपके लिए आज लेकर आऊं, एंड या आप इसे जरूर एंजॉय करेंगे।

पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है

जी, अब मध्य दिन में हम दाखिल हो गए हैं एंड 12:02 हो गए हैं। और हाँ जी, देखिए आप सुन रहे हैं ऑफ कोर्स संगीत की झनकार रेडियो ब्रिजवानी 1701 पर, और मैं शशि जोखन आज कुछ देर के लिए फिरोज खान जी का के जगह पर आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो कुछ आज एक स्पेशल डे है फादर्स के लिए, तो फादर्स के लिए जो कुछ नगमे, बच्चों के लिए नगमे मैं लेकर आई हूँ। मगर देखिए, ये सब रिलेशनशिप्स जो होते हैं ये अपने अपने जगह होते हैं ऑफ कोर्स, एंड हम सभी चाहते हैं कि जो भी रिश्ते हो ना, रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें बच्चों की भूमिका क्या होती है, इस पर मैं झलक डालना चाहती हूँ। देखिए, रिश्तों को टूटते देर नहीं लगती है, मगर जुड़ने में बरसों लग जाते हैं, मानते हो अपना। ये बहुत जगह देखी गई है कि रिश्तों को टूटते देर नहीं लगती है, मगर जुटने में बरसों लग जाती है। तो रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसका कुछ भी नाम हो, रिश्ते का जुड़ाव हमेशा सुखद ही होता है, और जो अलगाव होती है ना, वो बहुत दुखद होती है। बहुत दूर से देखो तो नहीं पता चलता, मगर दुखद बहुत होती है। किंतु प्रत्येक संबंध मधुर कहाँ रह पाता है ना, हर रिश्ते सुखपूर्ण नहीं होती है। फिर भी माता पिता ही, पति पत्नी हो या फिर सगे संबंधी हो अथवा अन्य कोई भी रिश्ता हो, इन सब के बीच कोई ऐसा पुल, ऐसा सेतु होना आवश्यक है जो इन्हें जोड़े रखते हैं। आपका क्या ख्याल है, कौन ये पुल है जो इन्हें जोड़े रखे सकते हैं? और वो आप सोचिए, मगर मैं आपको बताती हूँ। और वो लहरों का चंचल, फूल सा कोमल, अर्थात मजबूत पुल जो होता है ना, मेरे अनुसार ये बच्चों के सिवा और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। बच्चे इतना बड़ा आकर्षण है जीने के लिए कि दूसरे कष्ट, जो कष्टपूर्व इंसान होते हैं, इनके लिए भुला देता है। तो किशोर बच्चों की रिश्ते निभाने में एक और भी भूमिका होती है, और वो इस प्रकार होती है कि बच्चे इतना बड़ा आकर्षण है जिनके लिए वो जो लोगों के कष्ट है उसको दूर कर सकते हैं। किशोर बच्चों की रिश्ते निभाने में एक ऐसा भूमिका है जो ब्याह हो, शादी के अवसर पर जहां माता पिता जा नहीं पाते हैं या जाना नहीं चाहते हैं, वहां किशोर बच्चों को भेज देते हैं। बच्चा अपनों को तो जोड़ता ही है, परंतु वो अपना भी बना लेते हैं लोगों को। तो निश्चित ही आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों को मैं ये कहती हूँ, आपके जो रिश्ता है, आपका जो भूमिका है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है रिश्ते बनाने में और उन्हें निभाने में। तो ये तो रिश्तों के बीच की पुल की पुल का काम करते हैं ये बच्चे, इसलिए इतने सुंदर पवित्र पुल का निर्माण भी बहुत ही सावधानी पूर्वक और मजबूती से करना चाहिए। सो एनीवे, इसी के साथ मैं जितने भी पिता, यानी आज पितृ दिवस है, तो मैं आप सभी को, जितने भी पिता हैं, सभी को कहना चाहती हूँ, सभी पिताओं को, कि आपको रेडियो ब्रिजवानी की ओर से हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, हमारे स्पॉन्सर्स हैं, हमारे जितने भी प्रोग्राम मेकर्स हैं, सभी की ओर से सभी पिता को बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इट्स इम्पोर्टेंट कि हम आपको यहाँ से याद करें और आपको शामिल करें इस प्रोग्राम में। हाँ, तो एक्चुअली जो गीत मैं आपके लिए लाना चाहती थी, ये तो आप सुन ही चुके हो, मगर बहुत ही प्यारा सा नगमा मैं आपके लिए सिलेक्ट करके लाई थी, मगर चलो कोई बात नहीं, उसे हम छोड़ ही देते हैं, कुछ ही देर में आपके लिए प्ले करेंगे। मगर अभी तो हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे नगमे की ओर, और यहाँ से मेरे ख्याल से प्रोग्राम के मोड को बदल देते हैं, आई थिंक दैट विल बी बेटर, ठीक है। सो एनीवे, चलो ये गीत अब सुनते हैं। हाँ,

वेलकम बैक। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हो तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ आज संगीत की झनकार कार्यक्रम में। और हाँ जी, एक बार फिर अभी आपने सुना कई ऐसे गाने जो हमारे फादर्स के लिए और बच्चों के लिए, आज जबकि आज एक बहुत ही स्पेशल डे है फादर्स डे का ना, तो मैंने सोचा कि कुछ गीत आपके लिए पेश कर दूँ। मगर ये भी एक बहुत ही ऐसा गीत है जो अपने परिवार को जोड़ रखता है। हाउ स्पेशलिटीज, अपने तो अपने होते हैं।

जी, इस फिल्म में आप अगर ये फिल्म नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए इसे। इस फिल्म में धर्मेंद्र जी के साथ उनके दोनों बेटों ने साथ दिया था, बॉबी देओल और सनी देओल ने। एंड व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग ना, आई होप आप एंजॉय किए होंगे। तो देखिए, एक बहुत ही गहरी बात है। कहते हैं पेड़ कभी अपने फल खुद नहीं खाता है, पेड़ कभी अपने फल खुद ही नहीं खाता है, और नदी कभी अपना पानी भी खुद नहीं पीती है। सही है ना? सूरज कभी अपनी रोशनी अपने लिए नहीं रखता है, और फूल अपनी खुशबू खुद के लिए नहीं बिखेरते हैं। सो जो प्रकृति का हर नियम यही सिखाता है कि जो सबसे अधिक देता है वही सबसे अधिक सम्मान पाता है। सो इंसान भी जब सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना सीख जाता है, तभी उसका जीवन सच में सफल कहलाता है। तो सोचिए, दुनिया में लेने वाले बहुत है, लेकिन याद हमेशा देने वालों को ही किया जाता है ना। सो चलो एक और गीत सुनते हैं, इस बार सनम की आवाज में, उनके ग्रुप के साथ। ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

हाँ जी, ये तो सनम पुरी की आवाज में ये नगमा आप सुन रहे थे। और आरुष, हाँ जी मुझे पता है आरुष को ये गीत बहुत पसंद है। सो एनीवे, चलो इसे हम छोड़ते हैं यहाँ पे एंड आपको लेकर चलते हैं अगले गीत में। थोड़े पुराने गीतों की दुनिया में चलते हैं एंड ये सुनिए आप।

हाँ जी, किसी ने हमसे कहा कि ऑक्सीजन भी फ्री में ही मिलती है, सो अप्रिशिएट दैट। ईश्वर हमें पानी भी फ्री देती है ना, वह पानी का तो हम पैसे भरते हैं, मगर फिर भी अगर ईश्वर हमें पानी और ऑक्सीजन ये सब नहीं देते तो हम कहाँ जी पाते ना।

हाँ जी, आज रविवार की शाम फिरोज खान की जगह पर संगीत की झनकार रेडियो ब्रिजवाणी 1701 पर मैं शशि जोखन अब ये आखिरी गीत के साथ आपसे कहती हूँ नमस्ते एंड गुड बाय, बिकॉज अब यहाँ से सू आ जाएगी क्योंकि रोय सिंह आज प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे. सी, हम अक्सर सोचते हैं कि कल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कल किसी से बात कर लेंगे, कल अपने लिए वक्त निकालेंगे, कल वो काम पूरा कर लेंगे, लेकिन ज़िंदगी में कुछ कल कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं. सो जो करना है सो आज करें, और बस यही गीत के साथ मैं ये कार्यक्रम यहाँ से छोड़ रही हूँ और आपका साथ दूंगी. आज शाम को 5 बजे से 7 बजे तक ज़रूर ज़रूर हमारा साथ दीजिए, ठीक है? सो शशि जोखन की ओर से ओवर एंड आउट, मिलेंगे शाम को 5 बजे.

0: रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।
1: हेलो एंड गुड आफ्टरनून। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701। और शायद आप आज एक बार फिर रोय सिंह का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज एक बार फिर रोय सिंह हमारे स्टूडियोज में नहीं है, क्योंकि फादर्स डे है ना, तो अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ रोय भी आज फादर्स डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और स्वागत है आप सभी का जो आज रेडियो विस्वानी सुन रहे हैं। रेडियो विस्वानी आप सुन रहे हैं हमारे स्टूडियोज 17 मास रॉक्स ब्रिस्बेन से। अभी से लेकर ठीक शायद 4:30 तक आपका हमारा साथ होगा। और अभी आपके साथ शशि जी ने बहुत प्यारा सा फादर्स डे प्रोग्राम पर आपका साथ दिया। और चलते हैं, अब मेरी बारी है। देखिए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए फादर्स डे पर। सभी फादर्स को हमारी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। और जो भी फादर्स, जिनके पास भी फादर्स नहीं है, उनको भी हम आज याद करेंगे। और जैसे हमारे पास भी फादर नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम, और भी फादर्स हैं ना, सभी को आज हम बहुत सारे से प्यार भेज रहे हैं राइट ऑफ विस्वानी टीम की ओर से। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स। और हम यही कहना चाहते हैं कि पिताजी के बचपन की बातें क्या होती। बचपन में पिताजी जेब से हमारी हर छोटी जरूरत पूरी करती थी। तो सभी को पता है ना दोस्तों, हम बड़े हुए तो उनकी जेब का हाल पूछना ही भूल गए। एक दिन पिता ने कहा, बेटा इस बार थोड़ा संभल कर खर्च करना। तब समझ में आया, जिस हाथ ने हमेशा दिया वो हाथ भी कभी खाली हो जाता है। पिता की मेहनत को सिर्फ पैसे से मन तोलना दोस्तों, उनमें पूरी जिंदगी लगी होती है। चलते हैं, बहुत प्यारा सा गीत सभी फादर्स के लिए हमारी तरफ से आज है। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल डैड्स।

0: बहुत प्यारा सा फादर्स डे पर गीत आपने सुना दोस्तों। आप सुन रहे हैं रेडियो विजवाणी। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो अगर आप रॉय के इंतजार में हैं तो आज भी रॉय हमारे स्टूडियोज में नहीं है। आपका हमारा साथ होगा ठीक 4:30 बजे तक, मे बी 5 o'clock तक, डिपेंड्स हाउ आई गो टूडे। और वैसे भी बहुत से हमारे पास रिक्वेस्ट ऑलरेडी आ गए हैं फादर्स डे पर, और अलग सा भी फरमाइश है कुछ, और हमारे पास एक बर्थडे अनाउंसमेंट भी आई है दोस्तों। इसी के साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि आज फादर्स डे के साथ साथ अगर किसी फादर्स का जन्मदिन भी है तो क्या बात है, या हैप्पी बर्थडे, हैप्पी फादर्स डे, डबल बधाई आपको। और हाँ, जो लोगों का भी है, जिसका भी आज जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, कुछ भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी तरफ से आप सभी को बहुत सारी सी बधाइयां।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक, और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 days। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड्डे डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो, डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: चलते हैं दोस्तों, अगली फरमाइश है हमारे पास फादर्स डे पर, और किसने फरमाइश किया है? जी हाँ, अकेशिया रिज आज फिर से हमारे पास फरमाइश है अनवर और आदम, सॉरी अक्रम और आदम की ओर से, और अपने अब्बू को आज याद करेंगे, बहुत सारे से प्यार भेज रहे, दुआएं भेज रहे उनके स्वास्थ्य के लिए, दे प्राइंग, और अल्लाह पाक से ये दुआ है जल्द से जल्द अच्छे हो जाए। हैप्पी फादर्स डे कहना चाहते हैं अपने अब्बू को। डेडिकेशन है अकरम और आदम की ओर से फॉर देयर अब्बू अनवर।

0: बच्चों। तो कैसे हो दोस्तों?
1: तो बहुत प्यारा सा गीत आपने सुना दोस्तों, फादर्स डे पर, और इसे आज डेडिकेट करने वाले थे अकरम और आदम अपने अबू अनवर के लिए फ्रॉम आज फेल। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वाणी।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
5: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
4: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
5: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
4: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
5: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
4: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
5: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
6: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ

0: सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony. Remember the name, Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
1: और दोस्तों आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विश्वानी 17.1 किलोहर्ट्ज पर हमारे स्टूडियो 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से। और देखे हैं कौन हमारे साथ शामिल हो गए हैं। जी हाँ, हमेशा की तरह हमारे साथ ड्राइव पर है हाफिज भाई, जो उर्दू क्लासेस से वापस घर की ओर फॉरेस्ट लेक की ओर ड्राइव पर है। हाफिज भाई और उनके परिवार की ओर से द विशिंग ऑल द फादर्स अ वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे ऑल अराउंड द वर्ल्ड टुडे।
2: एक बाप ने पूरी उम्र बच्चों को पालने में गुजार दी, जिस कंधे पर बैठा कर बच्चों ने दुनिया देखी थी, उसी कंधे को बुढ़ापे में सहारा देने वाला कोई नहीं रहा।

0: एक बाप ने
1: और दोस्तों बहुत प्यारा सा एक कवाली गीत आपने सुना सूफी कवाली एल्बम से मैंने लिया था और इस वक्त हमारे साथ सफर कर रहे हैं हफीज भाई फ्रॉम फॉरेस्ट लाइक और उसने डेडिकेट किया था हफीज भाई उनके परिवार ने सभी फादर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड आई हैव वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: चलते हैं दोस्तों ऑकलैंड न्यूजीलैंड के, और बहुत से लोग हमारे साथ इस वक्त वहां से जुड़ चुके हैं और साधना वहां पर हमारा प्रोग्राम सुन रही है शारदा नाम से। सभी परिवार के साथ हमारा प्रोग्राम ऑकलैंड न्यूजीलैंड में अपने डैड अपने मम के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, जिनमें है सभी परिवार डैड कृष्णा चंद और उनके साथ है उनकी माँ और उनकी डॉटर्स है दिवेन एंड द फैमिली है उनके भाई और आशा एंड उनके परिवार ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। हमारे साथ सभी लोग एक साथ में जुड़े हैं, शारदा और आशा और फैमिलीज ऑल एंड द ग्रैंड किड्स फ्रॉम न्यूजीलैंड। सभी लोग अपने नाना दादा को ग्रैंड किड्स आज हैप्पी फादर्स डे पर कहना चाहते हैं, हैप्पी फादर्स डे, वी लव यू ग्रैंडपा। और साथ साथ में ऑल्सो यहाँ ब्रिस्बेन से उनके ग्रैंड किड्स है काई और आदि भी बहुत सारे से प्यार भेज रहे हैं अपने नाना को और पापा को। सभी को हैप्पी फादर्स डे फ्रॉम ऑल दिस फैमिली टू ऑल द फादर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड।

है दोस्तों, विकी पारकी आवाज का ब्यूटीफुल फादर्स डे सॉन्ग पापा की छाया में दिल को चैन आता है। और हमारे साथ शामिल है बहुत से लोग, हमारे साथ जुड़े हैं ऑकलैंड न्यूजीलैंड में शारदा उनके परिवार के साथ, वैसे हमेशा ब्रिस्बेन में रहती है लेकिन इस वक्त ऑकलैंड न्यूजीलैंड में अपने फैमिली के साथ फादर्स डे सेलिब्रेशन पर है। और उनके डैड है कृष्णा चंद और साथ में मम है, डॉटर्स है उनके और दिव्यन एंड फैमिली, आशा उनकी बहन उनके परिवार है और साथ साथ में ऑल द ग्रैंड किड्स यहाँ न्यूजीलैंड से और यहाँ ब्रिस्बेन से भी याद कर रहे हैं, प्यार भेज रहे हैं। और ब्रिस्बेन से उनके भाई जितेन और परिवार भी साथ में शामिल हो गए हैं फ्लेक्सटन से, और न्यूजीलैंड से भाई राजीव और उनके परिवार। विशिंग एवरीवन एवरी फादर्स अ वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे। स्ट्रेटन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, स्ट्रेटन से हमारे साथ शामिल हो गए कौन, राज और रोशनी। विशिंग ऑल द फादर्स अ वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे। रोशनी थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक एंड अरुणा थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक ऑल्सो।

बार फिर दोस्तों आपने सुना विकी पारक की आवाज के ब्यूटीफुल सॉन्ग और हमारा प्रोग्राम सुन है राज और साथ में है रोशनी फ्रॉम स्ट्रैटन. रोशनी थैंक यू सो मच फॉर फीडबैक वंस अगेन. हम चलते हैं दोस्तों शिकागो की ओर. हमारे पास फरमाइश है शिकागो से अमला सिंह की ओर से. लेकिन उससे पहले हम क्या कहना चाहते हैं, पिता का साया है जिसके होते डर भी छोटा लगने लगता है. उनके साथ हर मुश्किल रास्ता आसान सा दिखने लगता है. अपना हर डर छुपाकर जो बच्चों के लिए मुस्कुराते हैं, पिता ही वो इंसान है जो बिना कहे सब निभाते रहते हैं. उनकी मेहनत की खुशबू से घर का हर कोना महक जाता है. सच तो यूं है कि पिता के होते हुए बच्चों का पूरा जहां स्वर्ग हो जाता है. फरमाइश क्या है, अमला सिंह फ्रॉम शिकागो एंड शी इज डेडिकेटिंग टू ऑल द फादर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड अ वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे.

दोस्तों, हमारे पास डेडिकेशन आई थी इस गीत के लिए अमला सिंह की ओर से फ्रॉम शिकागो। और हम चलते हैं अगला गीत की ओर बढ़ते हैं और अगला गीत की ओर बढ़ते हैं और अगला गीत की फरमाइश हमारे पास है कैडरन पार्क से जोड़ी और सविता की ओर से।

0: जी हाँ दोस्तों, फरमाइश आई थी हमारे पास कैडोन पार्क से जोनी और सविता की ओर से। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701 और इस वक्त हमारे स्टूडियोज में 25 मिनट हो गए हैं 1:00। ये है शाम का सफर। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो शायद आप सोचते होंगे कि रोहित जी आए हैं, लेकिन नहीं, आई एम रोहित सिंह टुडे। तो जी आज आपके साथ रेडियो विस्वानी आपकी अपनी पहचान।
1: आर यू रेडी टू स्टॉप रेंटिंग एंड थिंकिंग अबाउट ओनिंग वन और मे बी एन इन्वेस्टर लुकिंग टू इन्वेस्ट? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
0: और डोंट फॉरगेट, आज हमारे पास एक जन्मदिन का भी सूचना है, दैट्स और वो भी है माइलस्टोन जन्मदिन। इसके लिए आपको रेडियो सुनना ही पड़ेगा, सुनते रहेगा कि आज कौन अपने माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी आपकी अपनी पहचान। दो दोस्त हमारे साथ सफर पर निकले हैं और देखे वो कौन है। जी हाँ, लॉगिन सेंट्रल से बिपिन मसूरिया और उनके दोस्त अमृत लाल इस वक्त हमारे साथ ड्राइव पर है। ए दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, आप दोनों की रिक्वेस्ट पर सुनते हैं। का नाम शोले

अच्छा दोस्तों, हमारे साथ सफर पर है विपिन और उनके दोस्त अमृत लाल। मुझे पता नहीं आपकी सफर किस तरफ की है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।

0: इस गीत के लिए हमारे पास डेडिकेशन आई थी वहाँ सैक्रामेंटो यूएसए से विजयन की ओर से, एंड डेडिकेटेड दिस सॉन्ग टू हिज ब्यूटीफुल वाइफ कामनी, जो मैं सुन रही है सैक्रामेंटो यूएसए में। कैसा लगा आपका सरप्राइज? चलते हैं यहाँ द गैप की ओर दोस्तों, द गैप माउंट कुथा की ओर। फादर्स डे पर हमारे पास अगला गीत के लिए फरमाइश है, और किसने फरमाइश किया है? ध्रुव और अरुणा। जी हाँ, हमें सुन रहे हैं ध्रुव और अरुणा द गैप में। फादर्स डे का अगला सॉन्ग है, लेकिन उससे पहले हम क्या कहना चाहते हैं पापा लोगों से कि पापा हमारे घर की शान है, उनके बिना जीवन वीरान है। पापा में बसती है सबकी जान है, वो हमारे ही भगवान है, उनके कंधों पर घर का सारा भार है, फिर भी वो करते हमसे बहुत ज्यादा प्यार है। जिम्मेदारी है लाखों सामने, चलता उन्हीं से सारा परिवार है, रखता हमेशा उनका ध्यान है और करना हमेशा सम्मान। पापा हमारे घर की शान है दोस्तों, उनके बिना जीवन वीरान है। मुझे पता है बहुत से लोग जो पापा पर गीत फरमाइश कर रहे हैं, दे डोंट हैव अ फादर, हमारे पास भी डेड नहीं है, लेकिन सभी का जो डेट्स है They are all like our dates. चलते हैं अरुणा अधरूप फ्रॉम द गैप, आप दोनों के लिए बहुत प्यारा सा गीत मैंने लिया है फादर्स डे पर।
1: कभी सोचा ही नहीं पापा कि आपकी खामोशी में भी कितनी कहानियां छुपी थी। हम अपनी जिदों में उलझे रहे और आप हमारी खुशियों के लिए उम्र भर लड़ते रहे। आज बस इतना कहना है, हम आपको समझते हैं।

अब जब जिंदगी समझ में आई है, अब जब जिम्मेदारियां आई हैं, अब जब रातों की नींद उड़ी है, अब जाकर आपकी याद आ रही है। अब समझा हूं पापा, क्यों आप चुप रहते थे, क्यों हर तकलीफ में भी बस मुस्कुराते रहते थे।

एक दिन हम भी बूढ़े होंगे, शायद बच्चे अपने होंगे, तब समझेंगे उस दर्द को जिससे आप हर दिन गुजरते होंगे। लेकिन उस दिन से पहले पापा, आज ये वादा करते हैं, जितना प्यार आपने दिया हमें उससे ज्यादा सम्मान करें।

पर प्यारे दोस्तों पापा पर आपने सुना और इस गीत को आज डेडिकेट कर रहे थे टू ऑल द फादर्स फॉर फादर्स डे ध्रुपेन अरुणा जो हमें सुन रहे हैं द गैप में आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विश्वानी दोस्तों यह शाम का सफर पौने दो बज चुके हैं इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में और आज हमारे पास क्या बात है फीडबैक के ऊपर फीडबैक है हमारे पास फीडबैक है रिचलैंड से जहां हमें सुन रहे विशाल जी विशाल थैंक यू सो मच I really appreciate your feedback. आपने फरमाइश किया है अगला गीत

0: नमस्कार दोस्तों, रफी साहब की आवाज़ का गीत की फरमाइश हमारे पास आई थी यहाँ रिचलैंड से विशाल की ओर से. विशाल, वंस अगेन थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.

0: हाय दिस सलमान खान
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
4: हाय, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
6: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
8: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
7: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
8: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business, built on trust.
9: चलते हैं दोस्तों, वादे के मुताबिक हम लेकर आ रहे हैं आज का बर्थडे अनाउंसमेंट। और देखें किसने भगवान कृष्णा के साथ साथ इस सप्ताह पूरा अपना जन्मदिन मनाया। लेकिन पहले जो जन्मदिन की हमारे पास सूचना ही अनाउंसमेंट आई है वो है मिसेस धन गौरी सोलंकी, और वो भी माइलस्टोन 90th 26 को अपनी 90th बर्थडे सेलिब्रेट किया। लेकिन हाँ, बड़ी बात यह है कि उनके बेटा अब बहू दिनेश सोलंकी एंड दक्षा सोलंकी गई व बिग सरप्राइज फ्रॉम एल आई यस्टरडे, लेस वेगस से। बहुत ही बड़ी सरप्राइज दिया है और परिवार के साथ विद द फैमिली, ग्रैंड किड्स, ग्रेट ग्रैंड किड्स के साथ, अपने बहुओं के साथ, अपने बेटों के साथ, अपनी बेटी गीता रमेश परमार के साथ, और साथ में और जितने भी उनके क्लोज रिश्तेदार थे। रूम इंडियन रेस्टोरेंट मिल्टन में बड़ी शानदार से खूबसूरती से उनके जन्मदिन 90th बर्थडे सेलिब्रेट किया। मिसेस धनगौरी सोलंकी, हम आपसे क्या कहें, क्या कहना चाहते हैं आंटी जी। फूल खिलते रहे जिंदगी की राह में, आपके खुशी के आंसू छलकते रहे आपकी निगाह में, कदम कदम पर मिले खुशी की बहार, आपको दिल देता है यही दुआ बार बार आपको, सफलता आपको चूमे, खुशी आपके गले लगाए, और अवसर आपके चुने समेत जो आपका पीछा है, प्रेम आपको गले लगाए। तो हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से, रेडियो ब्रिसवानी टीम की ओर से, आपके सभी परिवार की ओर से, आपके बेटे बहू दिनेश दक्षा सोलंकी ऑल द वे आपके लिए सरप्राइज पर आए हैं और आपको बहुत सारे से प्यार आशीर्वाद लेकर आए हैं। वंस अगेन हैप्पी 90th बर्थडे, हैप्पी माइलस्टोन, आपके लिए बहुत प्यारा संगीत है।

0: एंड हैप्पी माइलस्टोन बर्थडे. अपने जन्मदिन सेलिब्रेट किया वहाँ पर मिसेस धनगौरी सोलंकी फ्रॉम वेलवेट पार्क अपने ग्रैंड चिल्ड्रन अपने बच्चों के साथ बहुओं के साथ और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ यहाँ रूम मिल्टन इंडियन रेस्टोरेंट में. और वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम रेडियो विस्वानी. आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान. चलते हैं, और किसी का भी जन्मदिन था इस मंथ. बहुत से लोग हैं जो कृष्णा के साथ साथ अपनी जन्मदिन सेलिब्रेट किए. मेरे ख्याल से सभी लोग शायद माखन चोर होंगे या लड्डू चोरी करते होंगे, जैसे कि सैक्रामेंटो यूएसए में ललिता गौतम. उन्होंने भी अपनी 1 सितंबर को उनके ग्रैंडसन का 1 सितंबर को उनका जन्मदिन था, और 2 को उनके खुद ही ग्रैंडमा मिसेस ललिता गौतम का जन्मदिन था. और ये दोनों अपने जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए टेंपल ही पहुंचे, और साथ साथ में कहा है कि लड्डू गोपाल के लिए लड्डू भी लेकर गए. और मुझे पता है शायद आप लोगों ने भी लड्डू गोपाल के साथ लड्डू चोरी करके खाए होंगे, माखन भी कुछ चोरी किए होंगे. खैर कोई बात नहीं, जन्मदिन आप दोनों को बहुत बहुत बहुत सारे से बधाइयाँ, बहुत सारे से आशीर्वाद आपके फैमिली के ओर से, आपके डॉटर्स, आपके दोस्तों की ओर से, ग्रैंड चिल्ड्रन की ओर से हैप्पी बर्थडे. और साथ साथ में आपके जो ग्रैंडसन हैं उन्होंने साथ साथ में ग्रैंडमा के साथ अपनी जन्मदिन सेलिब्रेट किया है, तो ललिता गौतम और आपके ग्रैंडसन को भी बहुत सारे से बधाइयाँ भेज रहे रेडियो वाणी से.
1: तो आइएगा सुनते हैं ये

0: बात प्यारे सगे दोस्तों, जन्मदिन पर एक बार फिर आपने सुना, वहाँ सैक्रामेंटो यूएसए में ललिता गौतम ने भी अपनी जन्मदिन मनाए हैं अपने ग्रैंडसन के साथ टेंपल में। और उनका जन्मदिन से लिटिल बिट ऑफ करेक्शन ही, फर्स्ट उनका जन्मदिन सेकंड को नहीं था, फर्स्ट को, और उनका ग्रैंडसन का ऑपोजिट, इट वॉज ऑन सेकंड। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान।
1: फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान। और समय हुआ दोस्तों हमारे स्टूडियोस में 7 मिनट हो गए हैं 2:00, चलते हैं फादर्स डे पर। हमारे पास अगला गीत के लिए रिक्वेस्ट आई है, और किसने, जी हाँ, आज अपने डैडी को आज याद कर रहे हैं सभी बहनें, आशा और सूजी फ्रॉम सिडनी, और साथ में प्रवीणा फ्रॉम ऑकलैंड न्यूजीलैंड, कामनी फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए, एंड रिमेम्बरिंग ऑल द फादर्स ऑन फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे फ्रॉम देम। ये सभी बहनी की तरफ से सभी डेट्स को द विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे, आशा एंड सूजी फ्रॉम सिडनी, प्रवीणा फ्रॉम ऑकलैंड न्यूजीलैंड, और साथ में कामनी सैक्रामेंटो यूएसए से।

ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत प्यारा गीत, धन्यवाद पापा। वैसे हमें अपने पापा को धन्यवाद रोज ही कहना चाहिए जो आज हमारे साथ में है, और जो नहीं भी है उनको भी हम धन्यवाद देते हैं जो भी उन्होंने हमारे लिए किए हैं दुनिया में, आज हमारे साथ नहीं भी है। बहुत से लोग जो है गीतों को रिक्वेस्ट करते हैं जिनके पास पापा नहीं है, लेकिन आज जिनके पास पापा है प्लीज़ उनका कदर कीजिए। हैप्पी फादर्स डे फ्रॉम ऑल दी सिस्टर्स, ब्यूटिफुल सिस्टर्स जो रिमेम्बरिंग देयर डेट एंड ऑल द डेट्स अराउंड ऑस्ट्रेलिया हु आर लिसनिंग टुडे। दैट्स आशा एंड सूजी फ्रॉम सिडनी, साथ साथ में प्रवीणा फ्रॉम ऑकलैंड न्यूजीलैंड, कामनी फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। हम चलते हैं दोस्तों ग्रीन एका सिडनी की ओर। राजेन मालती प्रसाद सुनना चाहते हैं अगला गीत फादर्स डे पर, सुनते हैं अगला गीत, प्यारा सा गीत है।

0: फादर्स डे पर इस गीत को फरमाइश करने वाले थे, डेडिकेट कर रहे थे टू ऑल फादर्स रजन एंड मालती प्रसाद उनके परिवार की ओर से फ्रॉम ग्रीनेका सिडनी। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
4: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
5: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
4: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
6: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026 from 5:30 PM till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Saleen Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Saleen Singh on 04886234 59 ya Birendra Singh on 04093905 83 ya fir Baba on 04137016 51।

दोस्तों हमारे पास फादर्स डे पर रिक्वेस्ट आई है और फादर्स डे सॉन्ग किसने रिक्वेस्ट किया है? जी हाँ, हमारे पास फादर्स डे रिक्वेस्ट है मिस्टर एंड मिसेस असित राम और उनके परिवार की ओर से। विशिंग ऑल द फादर्स अ वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे फ्रॉम फॉरेस्ट लेक।

0: और दोस्तों इस गीत को फरमाइश करने वाले थे मिस्टर एंड मिसेज सेतराम फ्रॉम फॉरेस्ट लाइक एंड विशिंग ऑल द फादर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो लोग आज फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हैप्पी फादर्स डे टू ऑल डेड्स. हम चलते हैं सैक्रामेंटो यूएसए की ओर. अभिजन जी बहुत देर से अपना गीत सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, चलते हैं सुनते हैं आपकी क्या पसंद है.
1: Very-

गीत को फरमाइश करने वाले थे विजयन जो हमें सुन रहे हैं वहां सैक्रामेंटो यूएसए में। दोस्तों इसके साथ साथ पौने 3 बज चुके हैं हमारे स्टूडियोज में है शाम का सफर और आपके साथ है। सो जिंदगी जीने का असली मजा तो आपसे मांगे हुए सिक्कों से था, पापा हमारी कमाई से तो जरूरतें भी पूरी नहीं होती थी। खुशी का हर लम्हा पास होता है जब पिता साथ होता है, और जब जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करते। देखा मैंने पापा से अमीर इंसान कभी नहीं देखा। हम चाहते हैं मेली वेस्ट की ओर फरमाइश हमारे पास फादर्स डे पर लक्ष्मी की ओर से। हाँ लक्ष्मी, आई एम विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी फादर्स डे।

और हाँ दोस्तों, जरूर इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गई थी लक्ष्मी, जो हमें सुन रही हैं मेनली वेस्ट में। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान। हम चलते हैं कैलिफोर्निया यूएसए में, और वहां से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं मैक्स प्रसाद। मैक्स, आपके लिए अगला गीत।

दोस्तों हमारे साथ शामिल हो गए थे मैक्स प्रसाद फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए और वहां विजयन भी इस गीत को बहुत एंजॉय किया। विजयन आपको भी हमने इस गीत में शामिल किया। दोस्तों इसके साथ साथ हमारे स्टूडियोज में 3 ही बजने वाले हैं। शायद आज हमारा आपका समय रहेगा साथ रहेगा ठीक 4:30 बजे तक। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान।

और हम चलते हैं सिडनी की ओर दोस्तों. सिडनी से हमारे पास फरमाइश आई है. अब फरमाइश करने वाले हैं सनी और हमीजा. आप दोनों के लिए सनी और हमीजा अगला गीत.

अच्छा दोस्तों, हमारे साथ शामिल हो गए थे यानी हमारा प्रोग्राम सुन रहे बैंकस्टाउन सिटी में सनी और अमीषा। आप सुन रहे रेडियो ब्रिस्बेन, आपकी अपनी पहचान। और इस वक्त हमारे स्टूडियोज की घड़ी कहती है कि ब्रिस्बेन टाइम है, 3 मिनट हो गए हैं, 3 बजकर हम चलते हैं। एक बार फिर कैडरन पार्क की और जोनी और सविता सुनना चाहते हैं अगला गीत।

अच्छा दोस्तों, आप सुन रहे रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान, और ये है शाम का सफर आपके साथ। सु बहुत से लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हम चलते हैं दोस्तों जिम्बुम्बा की ओर। सोनिया हमारे साथ शामिल है। सोनिया चलते हैं, आपके लिए सुनते हैं अगला गीत।

0: इस सुरीले सफर में हमारे साथ
1: तो चलते हैं दोस्तों, देखे इस गीत को फरमाइश करने वाली थी सोनिया फ्रॉम जिम बुम्बा। और एक बार फिर हमारे पास कॉल है अरुणा की ओर से फ्रॉम द गैप एंजॉइंग द प्रोग्राम। थैंक्स अरुणा। अरुणा ध्रुव, चलते हैं आप दोनों के लिए अगला गीत सुनते हैं।
2: काहे देखा तो
3: झुमका देखो

और जरूर हमारे साथ इस गीत में एक बार फिर शामिल हो गए थे ध्रुप अरुणा फ्रॉम द गैप माउंट कुथा से। दोस्तों इस वक्त हमारे स्टूडियोज में समय हुआ 16 मिनट हो गए हैं 3:00 और है शाम का सफर। राइट ओवर्स वानी हम

दोस्तों हम तुम चलते हैं सैक्रामेंटो यूएसए की ओर और फरमाइश है हमारे पास ललिता गौतम की ओर से। चलते देखें उनके लिए कौन सा गीत है अगला गीत।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग दोस्तों, और इसकी फरमाइश करने वाली थी ललिता गौतम जो हमें सुन रही हैं सैक्रामेंटो यूएसए में।
1: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
2: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

चर्च प्रेजेंट स्पेशल परस्तिश की शाम, एक शाम प्रेजा वर्शिप के नाम। ब्रिस्बेन में पहली बार एक ऐसी शाम जहां तहमीना तारिक पेश करेंगी हिंदी, उर्दू और पंजाबी में अपने गीत। संडे 6 सितंबर शाम 4 बजे ग्रैंड एवेन्यू स्कूल में, कॉर्नर ऑफ सेंटेनियल वे एंड ग्रैंड एवेन्यू फॉरेस्ट लेक क्विंसलैंड 4078। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें मेविस 0418745179, राज 0407177117।

और दोस्तों इस गीत को मैंने लिया था सुरीनाम एल्बम से। अगर हाँ अगर आपको ऐसे ऐसे गीते पसंद है एंजॉयिंग, मेरे पास कुछ कॉल्स यहाँ पर आई है, लोग आर रियली एंजॉयिंग दीज सॉन्ग्स। तो याद रहे नेक्स्ट वीकेंड पर क्या है ब्रिस्बेन, पता है ना आपको सनातन सेंटर में क्या है? जी हाँ, भजन संग्रह, जो पीजी से कुछ लोग आ रहे हैं, सिडनी से भी मेरे ख्याल से, तो जाके कीर्तन और भजन में थोड़ा सा कंपटीशन वगैरह है मेरे ख्याल से। गो एंड एंजॉय दिस सॉर्ट ऑफ सॉन्ग्स। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान।

और जी दोस्तों, इस वक्त हमारे स्टूडियोस में 4:15 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 79.1 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियोस यहाँ 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से। क्या बात है, आज हमारे पास बहुत सारे से कॉल्स के ऊपर कॉल्स आ रही है, फीडबैक के ऊपर फीडबैक है हमारे पास, कुछ और फादर्स डे रिक्वेस्ट भी आई है। हम चलते हैं, देखें फादर्स डे पर हम क्या कहना चाहते हैं कि जिस कदम पर मैंने डगमगाया, हाथ पकड़कर कंधे पर उठा लिया, पूरे जहां की खुशियां दे दी मुझे, ओ प्यारे पापा है मेरे। और फरमाइश आई हमारे पास, विशिंग एवरी फादर्स अ वेरी हैप्पी फादर्स डे। गंगा एंड गीता फ्रॉम रेड बैंक।

सबसे पहले तो शुक्रिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

सुना उदित नारायण की आवाज में पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा पर्दे पर आमिर खान के लिए रेडियो वेस्वानी पर हमारे साथ शामिल हो गए थे। इन्हें इस गीत को डेडिकेट करने वाले थे टू ऑल द डैड्स, सभी पापास को, गंगा एंड गीता जो हमें सुन रहे हैं रेड बैंक में। चलते हैं दोस्तों, हमारे पास फरमाइश है कोरिंडा से अमन की ओर से, और अमन के साथ में कुछ मेहमान भी है उनके घर पर जो न्यूजीलैंड से आए हैं और they're celebrating Father's Day. Happy Father's Day to you all. और चलते हैं देखे उनमें कौन कौन है। नाम दिया गया है अमन है, नितेश, जेसिका, अनु और फैमिली फ्रॉम न्यूजीलैंड। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, आपके लिए आपकी फरमाइश पर सुनते हैं अगला गीत।

मुकेश लता जी की आवाज का गीत और फिल्म का नाम था फरिश्ता या कातिल। फरमाइश आई थी हमारे पास कोरिंडा से, जहाँ मैं सुन रहे हैं अमन और साथ साथ में है नितेश, जेसिका, अनु और फैमिली आए हैं वहाँ न्यूजीलैंड से, उनके साथ फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हैप्पी फादर्स डे। चलते हैं कामनी जो सैक्रामेंटो में हमें सुन रही हैं, आपकी अगली फरमाइश सुनते हैं।

0: और दोस्तों फरमाइश आती है हमारे पास कामनी नारायण की ओर से जो हमें सुन रही है सैक्रामेंटो यूएसए में।
1: Digicel, better together.
2: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote, code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
9: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
10: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
11: Hi, this is Ajay Devgan, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर, याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: अब मुझे पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्योहार था वो फिनिश हो गया है, लेकिन हाँ जरूर हम अभी भी उन्हें बधाइयाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं। अगर आपने मिस कर दिया है ऐसा कुछ तो सुनिए।

दोस्तों समय की ओर देखा जाए, इसके साथ साथ बस हमारे स्टूडियोज में 8 मिनट हो गए हैं, 4:04। यह रेडियो विश्वानी अयम शाम का सफर।

अच्छा दोस्तों, आई गॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक्स टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारे पास यहाँ पर बहुत बड़े फीडबैक्स आई है कि थैंक यू फॉर मेकिंग अ ब्यूटीफुल फादर्स डे, आई रियली अप्रिशिएट दैट। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानूं लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानूं फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। A place to call home खोजो।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually, bond and experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में बस पौने पांच बजने वाले हैं। चलते हैं इस प्रोग्राम का आखिरी गीत सुनते हैं, और जो आखिरी गीत है आप सभी के लिए।

रात दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में बस 4:45 ही बजने वाले हैं। साथ हमारा आपका आज यहीं तक था। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई वुड लाइक टू से फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एवरीबॉडी हु हैज सेंड मी द बेस्ट फीडबैक ही फॉर फादर्स डे टुडे। एंड मुझे बहुत अच्छी लगती है जबकि मैं यहाँ से प्रोग्राम लेकर आती हूँ, और प्रोग्राम बनाने में भी समय लगता है। इट्स नॉट वेरी इजी टू मेक अ ब्यूटिफुल प्रोग्राम। हमेशा सिर्फ बोलने से ही नहीं कि यू डूइंग अ गुड जॉब, लेकिन थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट ऑल योर फीडबैक आउट देयर। और हमारी अगली मुलाकात है नेक्स्ट वीकेंड पर, सैटरडे 1 PM से शनिवार मस्ती म्यूजिक पर। और याद रहे 5 बजे से आपके साथ हो जाएंगे एक बार फिर से शशि चौहान, साथ उनका जरूर दीजिएगा। और हमारी अगली मुलाकात तक लिए हैव अ नाइस वीक, नमस्ते, खुदा हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।

0: एक रंगीन शाम आपके नाम शशि जोखन के साथ।
1: ये शाम शानदार,
2: मुस्कुराते हुए चेहरे, यादों के सिलसिले और रविवार की ये मखमली सी शाम। जी हाँ, शाम के 5 बज चुके हैं और मैं शशि जोखन हाजिर हूँ आपकी पसंदीदा धुने लेकर। कहते हैं ना कि संडे की शाम जैसी कोई और शाम नहीं होती, ठीक है? तो आइए इस शाम को और भी यादगार बनाते हैं एक साथ मिलकर। रेडियो वीरस्पानी 1701 पर ये जो एक रंगीन शाम आपके नाम और सुरों का सफर शुरू।

हाँ जी, मुबारक हो आपको ये रंगीन शाम, इस प्यारी सी शाम में, प्यारे से मौसम के साथ, और जैसे आप जैसे प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ हूँ मैं यहाँ पर, इसीलिए मैं आई हूँ। और इसी के साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि नमस्कार, कैम्चो, सात श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम, और बुला साथ में, ठीक है।

जी आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम, और पूरे 7 बजे तक मैं आपका साथ दूंगी। और हाँ जी, सर्दी का मौसम गया, ओ माय गॉड हाउ गुड नाउ विंटर ओवर, और अब हम स्प्रिंग में दाखिल हो चुके हैं। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम ऑफ द ईयर जब बहुत सारे फूल वगैरह खिलते हैं। मगर देखिए, आज मैं जो इंग्लिश शब्द आपके लिए लेकर आई हूँ वो है स्प्रिंग, SPRING। आप मुझे इसके हिंदी शब्द बताइए कि स्प्रिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं। सो ये जानने के बाद, ये जो लगभग 7 बजे के नज़दीक, मैं आपको बताऊंगी कि उसका सही आंसर क्या है। मगर अभी तो आप ढूंढिए, पूछिए, अगर बच्चे सुन रहे हैं तो इट्स वेरी गुड। आप मुझे बताइए कि ये जो मौसम आया है स्प्रिंग का, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं। सुनते हैं अगला गीत।

चलो आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही हरा भरा कार्यक्रम लेकर आई हूँ फुल ऑन, ठीक है? आप भी बस जुड़े ही रहिए क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारे ऐसे ऐसे बातें हैं जो आपके लिए मैं लेकर आती ही रहती हूँ। सो उम्मीद है कि आप साथ देंगे। और याद रखिए, आज का जो शब्द है स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग जो मौसम, ठीक है? जो मौसम आया है, अभी हम स्प्रिंग मौसम में दाखिल हुए हैं, तो उसकी जो हिंदी शब्द है ये ढूंढकर बताइए। और हाँ जी, पारिवारिक विषय ऑफ कोर्स हम लेकर आए हैं और आज की जो टॉपिक है वो है बच्चों को खतरों से सचेत करना, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पेरेंट्स या फैमिली। तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे बाद में। और छोटी छोटी बातें अपनों की, ये भी सेगमेंट लेकर आई हूँ। और कुछ न्यूज़, कुछ व्यूज़, बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें करने की है। मगर आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है और मुझे पता है कि आप आज पूरे दिन यही सुने होंगे कि आज इतना स्पेशल दिन है। यूजुअली हम कुछ ना कुछ सुनते ही रहते हैं, कहीं ये त्यौहार वो सभी कुछ आते रहते हैं, मगर आज क्यों स्पेशल है? बिकॉज आज फादर्स डे है। फादर्स डे इज वेरी वेरी स्पेशल, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि देखिए मदर्स डे तो आते ही रहते हैं। मदर्स डे ज़्यादातर लोग माँ को ज़्यादा वो देते हैं ना, मगर जब पिता का दिन आता है तो उनको लगता है कि इतने सारे कार्ड्स वगैरह, बहुत सारे नहीं ये हलचल होते हैं, मगर जो पिता होता है ना वो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होते हैं। बहुत ही पवित्र शब्द है पिता, तो इस पर हम कुछ झलक डालेंगे। मगर अभी तो चलो ये गीत सुनते हैं।

0: जी, मुझे उम्मीद है आज जितने भी फादर्स कार्यक्रम सुन रहे हैं, जितने भी पिता कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका दिन बहुत ही बढ़िया जा रहा है एंड बच्चों का बहुत सारा प्यार आपको मिल रहा होगा। देखिए, वैसे तो ये जो मदर्स डे फादर्स डे जो होते हैं, ये किसी एक स्पेसिफिक डे के लिए होना ही भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही कठिनाई के साथ अपने बच्चों को पालते पोसते हैं एंड ऑल दैट ना। सो इसलिए एक दिन तो कुछ भी नहीं होता है। देखिए, पिता शब्द बहुत ही पवित्र शब्द है, जो संतान का पालन और रक्षा करे उसे पिता कहते हैं, ठीक है। और संतान ही क्यों, सारे घर के पालन और रक्षा का भार पिता पर होता है या नहीं। मगर देखिए, आजकल तो माँ भी काम करती है, बाहर जाती है। पहले ज़माने में मदर्स काम नहीं करते थे, वो घर पे रहते थे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि माँ कुछ करती नहीं थी। माँ के ऊपर बहुत सारा काम होता था, घर को संभालना, खाने पीने की प्रबंध करना एंड बहुत कुछ करना माँ को होता है ना। लोग कहते हैं कि जब कोई घर पे रहते हैं तो काम ही नहीं होता है उनके पास, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हाउसवाइफ्स होते हैं, जो मदर्स घर पे होते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं एंड ऑफ कोर्स बच्चों की देखरेख, पालन पोषण ज्यादा उन्हीं के ऊपर होता है। मगर फादर जो होता है वो प्रोवाइडर होते हैं खास तौर से, ठीक है। एटलीस्ट ये जिम्मेदारी उनकी होती है और होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो कुछ ठीक नहीं है। एनीवे, घर के लिए सभी आवश्यक सामग्रियों को पिता ही जुटाता है। इस भार को उठाने के लिए उसका शरीर हष्ट पुष्ट होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और घर की जितनी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करना पिता का कार्य है, पिता का कर्तव्य है कि घर में किसी भी वस्तु की कमी ना आने दे और घर में अन्न धन कपड़ा आदि की कमी ना हो। ये सभी कुछ पिता को ध्यान में रखना होता है।
1: Gets himself a wife, but a daughter is a daughter. Oh!

हाँ जी, देखिए सबसे पहले हम पिता को लेते हैं ना, तो पुरुष के रूप में हर लड़की के लिए उसका पहला मॉडल, रोल मॉडल उसका पिता होता है, ठीक है, जो उसकी माँ का पति होता है। और अपनी माता के प्रति पिता के व्यवहार में वो अपने होने वाले पति की छवि देखती है। वैसे भी पिता और पति दोनों स्त्री के संरक्षण माने जाते हैं, और विवाह से पहले पिता और विवाह के बाद पति, ठीक है। इसके अतिरिक्त लड़की का संपूर्ण व्यक्तित्व बनाने में पिता का विशेष भूमिका भी होती है। जो लड़कियां पिता की छत्र छाया में पलकर बढ़कर युवा होती है, वो जिसको पिता का भरपूर स्नेह मिलता है, वे बहुत ही स्वाभिमानी होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस गीत को आपके लिए पेश की। एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एक पिता हो तो आप किस तरह से एक बेटी की माँ को ट्रीट करते हो ना, उस तरह आपकी छवि बनती है। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। यूँ तो माता पिता बनने का सौभाग्य हर प्राणी को मिलता है, परंतु उनकी जो सेवा का जो शुभ अवसर बड़े भाग्य वालों को नसीब होता है। वे ढेर सारे ये जो दिवस है सारे उपहार लाकर पिता के सामने रख देने के लिए नहीं है, बल्कि हमें ये याद दिलाने आता है कि पिता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड हमारा धर्म क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या है, केवल एक दिन उन्हें ढेर सारा प्यार देने में, उपहार देने से हमारा कर्तव्य पूर्ण नहीं हो जाता है। हमारा धर्म नित्य प्रति उनकी सेवा में है, जो शायद इस आधुनिक युग में हम भली भांति से ये नहीं निभा पाते, क्योंकि बच्चे आजकल इधर उधर रहते हैं, माता पिता कहीं दूर रहते हैं, तो हर बार तो ये हम नहीं कर सकते हैं। मगर फिर भी जो भी आप करें तो सोच समझ कर करिए, क्योंकि ये जो पिता होते हैं ना, पिता से नाम है तेरा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है।

बहुत ही प्यारा सा गीत है ये। अगर इसे बहुत अच्छी तरह आप, इनके जो लिरिक्स है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी तरह इसे लिखा गया है और सभी बच्चों के लिए, ठीक है। और देखिए जिस तरह से माँ की ममता के साय में कोमलता और जीवन के आनंद का एहसास एक्चुअली होता है, ठीक उसी तरह पिता के साय में रहकर हर कोई ठोस व्यक्तित्व पाता है और जिसके सिर से पिता का साया उठ जाता है वो अपने को इस दुनिया में बहुत ही अकेला महसूस करता है, क्योंकि पिता जो होते हैं ना वे अपने बच्चों को जीने की राह सिखाते हैं तथा जिसे सीखकर एक व्यक्ति में मैच्योरिटी आती है और वो समाज में एक पुरुष कहलाता है। तो पिता जो भी हो वो चाहता है कि उसके बच्चे पढ़े लिखे तथा खूब उन्नति करें और जीवन में सफलता हासिल करें, ठीक है। और माँ भी तो यही चाहती है लेकिन वो अपने बच्चों को आंचल में छिपा कर रखना चाहती है, जबकि पिता अपने जिगर पर पत्थर रख कर अपने कलेजे के टुकड़े को कहीं बाहर तालीम के लिए भी भेज सकते हैं। तो यही सब बहुत ही सोचने वाली बात है, मगर पिता के भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां, और ये भी होती है कि आप अपने बच्चों को प्यार दें, उनमें ऐसे विश्वास डालें, उनमें ऐसे विश्वास डालें, ऐसे विचार डालें ताकि वे बड़े होकर एक अच्छे इंसान बन सके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बच्चा पढ़ लिख कर, तो ये तो आप सुने ही होंगे ये सॉन्ग, तो मैं चाहती हूँ कि आज ये गीत आपके लिए पेश करूँ। सो ये गीत बहुत ही बढ़िया है एंड आप इसे जरूर सुनिए, आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट।

पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

बहुत बहुत ही बढ़िया सा ये गीत। और देखिए ऑफ कोर्स फादर्स या पेरेंट्स जो होते हैं बहुत खुश होते हैं अपने बच्चों की तरक्की देखकर। वैसे तो आप कभी कभी सुनते हो बच्चे कहते हैं कि उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बात है ज़रूर कि आपकी कामयाबी और आपकी खुशी और आपकी अमीर होने पर सबसे ज़्यादा खुशी किसको मिलती है, आपके माता पिता को होते हैं, ठीक है। लेकिन ज़िंदगी में हर बार अलग अलग सोचते हैं हम अपने पिता के बारे में। जैसे कि कोई ऐसा कहता है कि मेरे डैड महान हैं, सब कुछ जानते हैं। कोई कहता है मेरे डैड अच्छे हैं लेकिन थोड़ा गुस्सा वाले हैं। कोई कहता है मेरे डैड बचपन में अच्छे थे, मेरे डैड थोड़ा अकड़ू हो गए हैं, जमाने के साथ नहीं चलते हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं। कोई कहता है कि ऐसे डैड को बर्दाश्त करना मुश्किल है और नुक्श निकालते रहते हैं। कोई कहता है अपने पिता से बहुत डरते हैं हम, बहुत कोई कहता है बहुत हमारी परवरिश अच्छी से करे हैं, अच्छी तरह करे हैं, मैं अभी तक हैरान हूँ कैसे करते थे वो सब, पालन पोषण में कितनी दिक्कत का सामना होता है और अपने बच्चे को मैं कैसे संभालूंगा। तो देखिए, माँ बाप के कारण हम इस दुनिया में आए हैं। हर दिन फादर्स या मदर्स डे होनी चाहिए ना। तो ज़्यादातर लोग अपने माता पिता से कह नहीं पाते हैं कि यू आर ग्रेट एंड आई लव यू, आप कितने अच्छे हो, बट कहना चाहिए क्योंकि इस दुनिया में उन्हीं की वजह से हम यहाँ हैं ना। चाहे हम पढ़ लिख कर जितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, मगर ये हम अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाते हैं। क्यों नहीं कह पाते हैं, क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि हम नहीं कह पाएंगे, मगर कहना चाहिए ज़रूर। देखिए चलते हैं पिता की ओर। तो पिता की जैसे हमने कहा जिम्मेदारी बहुत होती है कि वे अच्छे पिता बने, अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दें, उनमें विश्वास डालें ताकि वे बड़े होकर अच्छे इंसान बने। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि माता पिता तो चले जाएंगे मगर बच्चे रह जाएंगे, और उनमें अगर आप सही शिक्षा नहीं डालेंगे, सही बातें नहीं सिखाएंगे, तो वो बच्चा अकेले कैसे आगे बढ़ेगा। एनीवे, पिता के लिए कुछ ज़रूरी बातें मैं कहना चाहती हूँ। मैं बहुत ही फॉर्चुनेट खुद को मानती हूँ क्योंकि मैंने फिरोज जी की कार्यक्रम को संभाला आधा समय, एंड मुझे अवसर मिला। वैसे फिरोज जी तो बहुत पहुँचे हुए प्रोग्राम मेकर है एंड बहुत ही एक्सपीरियंस है, मगर आज मुझे मौका मिला उनकी जगह पर काम करने के लिए, तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ। मगर उस समय भी मैं इस पर चर्चा की थी कि पिता के लिए कुछ ज़रूरी बातें होती हैं, जैसे कि बच्चों का इंतज़ार करना सीखिए। अगर बच्चे कहीं गए हुए हैं तो वापस आए तो आप उनका इंतज़ार करें, उनको अच्छा लगेगा। उनको प्रेम करना आप सिखाए कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करनी चाहिए, ये सब पिता को सिखानी चाहिए। वैसे तो माँ सिखाती ही रहती है। और उनकी छोटी छोटी बातों में रुचि लें, उनको कहानी या कविताएं सुनाएं, कुछ गुनगुनाएं भी उनके साथ, आई एम श्योर दे विल लव इट। और जैसे जतीश जी कहते हैं कि वो उनके घर पे जो आयुष है वो उन जब ये लोग गाने सॉन्ग सुनते हैं तो बच्चे लोग भी उसी गीतों में रुचि रखने लगते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपने भाषा में भी उनसे बातें वगैरह कीजिए। तो देखिए, जब बच्चे सोने से पहले और स्कूल जाने से पहले आप उन्हें हग करिए, उन्हें किस कीजिए, उन्हें कहिए कि आप उन्हें मिस करेंगे, ताकि बच्चा लुक फोर्ड करे घर आने के लिए, ठीक है। तो ये कहना बहुत ज़रूरी है। स्कूल जाने से पहले गुड डे और सोने से पहले गुड नाइट का फॉर्मूला भी आप अपनाइए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे सेफ्टी और सिक्योर फील करते हैं पेरेंट्स के साथ रहकर। तो ये सब अगर आप कहेंगे तो बच्चा बहुत ही सिक्योर फील करेंगे आपके साथ। और सप्ताह में एक बार उन्हें बाहर ज़रूर ले जाइए, उन्हें होमवर्क में मदद करिए, और ऐसे ऐसे कुछ बहुत सारी बातें होते हैं। रोल मॉडल बनने के लिए माँ का आदर करना सिखाए आप उन्हें। आप अगर माँ का आदर करेंगे तो आप बच्चा भी देखकर
माँ का आदर करेंगे ना, सिर्फ पिता ही नहीं एक आदर्श व्यक्ति भी बने, और अनुशासन और पाठ पढ़ाए और जिम्मेदारियां भी सौंपे, उन्हें छोटी छोटी काम करने को कहिए ताकि बच्चा ये सब कर सके। हाँ, मुझे पता है आप ये सब जानते हैं, मैं क्यों बता रही हूँ आप सोच रहे होंगे, मगर मैं सोच रही हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको ये सब शायद नहीं आता होगा, वो सोच ही नहीं पाते हैं ये सब, क्योंकि उनके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा तो वो अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए शायद उन्हें नहीं आता होगा। तो लोग ऐसे फादर्स को कह देते हैं कि ये समझदार नहीं है, ये अपने बच्चों को अच्छी तरह पालते पोसते नहीं है, तो ये सब बातें होती है। मगर देखिए, ये थी कुछ बातें, मगर चलो आगे बढ़ते हैं।

हाँ जी, चलो अब जितने भी पिता सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, यहाँ से मैं आप सभी को कार्यक्रम में शामिल करती हूँ और आप सभी को कहती हूँ कि इस फादर्स डे पर के अवसर पर सभी पिताओं को शुभकामनाएं। और ये सिर्फ हमारे ओर से नहीं, हमारे फैमिली के ओर से भी, और रेडियो ब्रिजवानी के जितने भी प्रोग्राम मेकर्स अनाउंसर्स है, जतीश जी है, अंजला पूरन जी है, सभी की ओर से आप जितने भी पिता है सभी को शुभकामनाएं। बहुत ही बढ़िया दिन है और हम आप सभी फादर्स को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। और आप हर बार रेडियो ब्रिजवानी सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

चलो बहुत ही प्यारा सा नगमा आप सुन रहे हैं, एक रंगीन शाम आपके नाम, रेडियो प्रिजवानी 1701 पर, और मैं हूँ शशि जोखन, आपका साथ पूरे 7 बजे तक दूंगी। और कुछ ही देर में हम लाएंगे आपके लिए पारिवारिक विषय, बच्चों को खतरों से सचेत करना कैसे चाहिए ये हम आपको बतलाएंगे। वैसे तो आपको मालूम ही है, मगर मैं आपको कुछ जानकारी और दूंगी। और हाँ जी, चलते हैं कार्यक्रम के मोड को जरा सा बदलते हैं। और हाँ जी, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। यही जब बच्चे छोटे होते हैं तभी आपको मौका मिलता है उनके साथ समय बिताने के लिए। जितना समय हो सके, जितना प्यार हो सके अपने बच्चों को दीजिए, क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं फिर हाई स्कूल वगैरह जाने लगते हैं तो फिर तो मौका ही नहीं मिलता उनको आपका साथ देने के लिए। फिर बड़े होते हैं, शादी वगैरह होते हैं, तब तो बिल्कुल दूरी हो जाते हैं ना। एनीवे

0: जी, उम्मीद है कि आपको कार्यक्रम पसंद आ रही होगी। और भाई, मंडे के डर को दूर करने के लिए तो मैं आई हूं अभी इस समय आपका मन बहलाने के लिए, ताकि आप ऐसा ना सोचें कि कल सोमवार को क्या होगा। और क्यों सोचे कि कल सोमवार को क्या होगा, जो भी होगा जिंदगी का एक नया तजुर्बा होगा ना। सो संडे की शाम को खुलकर जी लो, आने वाला हफ्ता कामयाबी का एक नया सवेरा होगा, होगा ना। सो इसीलिए मैं देखिए, बहुत बहुत कुछ अभी चंद हफ्तों में हुआ है, एंड आपको पता भी है कि नेपाल में आई भयानक बाढ़ को देखना इस बात की कठोर याद हमें दिलाता है कि हमारी योजनाएं असल में कितनी कमज़ोर है, कितनी कमज़ोर है। हम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे भविष्य की योजना बनाने में बिता देते हैं जिसका कोई वादा नहीं किया जा सकता था। ठीक है, एक घर, एक करियर, एक परिवार, अगले साल, आज से 10 साल बाद, और फिर प्रकृति कुछ ही मिनटों में हमें याद दिला देती है कि सब कुछ, हाँ जी सब कुछ, कितनी तेजी से बदल सकता है। कल के लिए योजना बनाएं, लेकिन उसके लिए जीना ना टाले। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिए। सो हमने नेपाल तिब्बत चीन बॉर्डर पर आइए जो भयानक और अचानक बाढ़ के फुटेज को बहुत हैरानी और दुख के साथ देखा है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को चेतावनी देने के लिए बनाए गए जो कॉमन कम्युनिकेशन सिस्टम भी इसके सामने बेअसर साबित हुए। अगर किसी कारणवश आप अभी तक नहीं देखे हैं ये फुटेज, तो मैं कहना चाहती हूं कि ये अधिक दर्दनाक और खतरनाक ट्रेजेडी रही है, और मोर देन लगभग 3000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। और सुनने में बहुत कुछ आ रही है, जिनमें एक ये भी है कि ये डेविस्टेटिंग बाढ़ जो फ्लड चाइना नेपाल बॉर्डर पर ग्लेशियर कोलैप्स होने की वजह से ट्रिगर हुई है। बेहद खूबसूरत दिन, कोई भी संकेत नहीं, बारिश वगैरह नहीं, फिर भी अचानक से इतनी गंभीर और खतरनाक जो फ्लडिंग के चपेट में कैसे लोग आ गए। कई हजार लोग दुनिया भर से इस समय कैलाश मानसरोवर यात्रा, तिब्बत में स्थित माउंट कैलाश में उस झील की एक पवित्र और ऊंचाई पर स्थित तीर्थ यात्रा जो है, यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन और कई और धर्मों के लोग यहाँ पर बहुत सम्मान देते हैं, जाते हैं। सबसे अच्छा समय तीर्थ यात्रा का समय हर साल बस मई से सितंबर तक होता है, और मानसून के समय ही यहाँ पर लोग उभरते हैं। तो देखिए, फ्लडिंग शुरू होने पर लोग समझ ही नहीं पाए कि इसकी गंभीरता, और बहुत से लोग वीडियो बना रहे थे, परिवार को फोन कर रहे थे, और क्षण समय में वे भी इसके चपेट में आ गए। तो एक बाढ़ जो बेहद, जो बहुत ही बेहद लकी थे जो लोग ऐसे इसमें से बचकर निकल गए। तो एक बंदा है जो बहुत ही लकी था, समय पर वे ऊंचाई पर पहुंच गए, और उनका कहना है कि उस खतरनाक समय में मौत की आवाज गूंज रही थी हर तरफ, जिसका सामना करना बहुत कठिन था। किसी और की मदद करें या भागते रहें। एनीवे, रेडियो ब्रिजवानी की ओर से इस कठिन समय में मेरी प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। ईश्वर उन्हें इस असहनीय दुख सहने की शक्ति दे। और नेपाल में आई इस विनाशकारी खबर से मन व्यतीत है सभी का, मुझे पता है, और मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना हम यहां से करते हैं। खैर, चलते हैं, इसी को ध्यान में रखकर एक गीत आपके लिए लेकर आए हैं।
1: अगर इंसान इंसान के काम नहीं आया, तो फिर इतनी बड़ी पहचान लेकर हम करेंगे क्या? धर्म अपनी जगह है, जात अपनी जगह है, लेकिन किसी की आंखों में आंसू हो तो उसे धर्म नहीं, इंसान।

0: दिल में दया है।
1: एक रंगीन शाम आपके नाम, सुनते रहिए। एक रंगीन शाम आपके नाम, सुनते रहिए।
2: हाँ जी, सुनते रहिए। मैं शशि जोखन, रेडियो ब्रिजानी 1701 पर एक रंगीन शाम आपके नाम के साथ पूरे 7 बजे तक। ठीक है, तो चलो, सच अ पावरफुल सॉन्ग, आई होप आप एंजॉय किए होंगे, क्योंकि मैंने उनके हर जो लिरिक्स के हर एक शब्द को दिलो जान से लगा कर रखी हूँ। ठीक है, तो चलो पारिवारिक विषय की ओर हम चलते हैं। वाओ, व्हाट अ पावरफुल सॉन्ग। सो देखिए, बच्चों के लिए सिर्फ प्यार और भावना की सुरक्षा ही की जरूरत नहीं है, उनमें खतरों के प्रति आत्मविश्वास और हौसला भी आप जगाए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि अकेले में, हाँ जी, अकेले में बगैर आपकी सलाह लिए भी वे सही वक्त पर सही निर्णय लेने में समक्ष हो सके। ठीक है, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप इस बात को सही ढंग से समझे और बच्चे को भी समझाए। और देखिए, ये सही है कि यदि बच्चों को मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रखा जाए कि किस किस तरह के खतरे उनके सामने आ सकते हैं, तो वे उनका मुकाबला निडरता के साथ कर सकते हैं। नौकरी करने वाले पति पत्नी घर में ना हो या ना होने के अलावा भी कई बार ऐसे मौके आते हैं जब बच्चों को घर में अकेला रहना पड़ता है, इसलिए उन्हें बताया जाना चाहिए कि क्या क्या उन्हें करना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आपको पता है आपके देश में, सभी देश में एक स्पेशल एज लिमिट होता है कि आप बच्चों को इस उम्र से कम के बच्चों को अकेला घर पर नहीं छोड़ सकते हैं, है ना, तो इस पर आप जरूर ध्यान दीजिए। और देखिए, बच्चे जब घर में अकेले हो तो आप उन्हें ये बताएं कि किसी की कॉल बेल या डोर बेल जो बजते हैं ना, बजाने पर, दरवाज़ा खटखटाने पर एकदम दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। ये बात आप बच्चों को ज़रूर समझाएं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों को जानना चाहिए कि अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए या डोर बेल बजाए तो उन्हें डोर नहीं खोलना चाहिए, किसी अन्य स्थान से देखना चाहिए कि वो व्यक्ति परिचित है या नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि वो परिचित यानी जान पहचान वाला नहीं है तो उससे नाम और काम पूछना चाहिए, या फिर जब बड़े लोग घर पर आ जाए उस समय आने के लिए कहना चाहिए, और इतना भी नहीं कहना चाहिए कि वो घर पर अकेले है। ठीक है, जस्ट अदरवाइज डोंट अटेंड एट ऑल, कुछ भी ना कहिए। मगर इवन पहचान वालों को, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप बच्चे घर पर अकेले हैं तो पहचान वालों को भी अंदर ना आने दे, अनलेस कोई अपना कोई साथ में हो। अगर दरवाजा खोलना भी पड़े तो सेफ्टी चेन लगाकर दरवाजा खोलना चाहिए। बच्चों को अपने जो इमरजेंसी नंबर है उसके विषय में जरूर बतलाइए, पुलिस थाने का नंबर, फायर ब्रिगेड का नंबर, और हॉस्पिटल के लिए जो इमरजेंसी नंबर होती है उन्हें याद करा देना चाहिए, ये या फिर फोन के पास बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए, या आप अपने फ्रिज पर लगा सकते हैं ये नंबर। कभी कभी कहीं कहीं पर मैं देखा है कि कुछ भी नहीं रहता है ऐसे, तो जब इमरजेंसी आ जाए तो बच्चे करे क्या, घबरा जाते हैं ना, या बड़े भी घबरा जाते हैं, तो इस इम्पोर्टेंट कि आप इसे बड़े अक्षरों में लिख कर वहां पर लगा दीजिए। इसी के साथ माता पिता को अपने ऑफिस के फोन नंबर और ऐसे ऐसे लोगों का नंबर डाल देना चाहिए जिनको वे फोन करके सहायता मांग सकते हैं या बतला सकते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनकी भी फोन नंबर आप लगा सकते हो जहां पर अपने नंबर डालते हो ना। और बच्चों के जो स्कूल आने जाने के समय, बच्चों को सीधे स्कूल जाने और सीधे घर आने के लिए कहना चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे खेलने लगते हैं और माता पिता अगर इंतजार ही करते रहते हैं, मगर ऐसा हो सकता है कि शायद कभी बच्चा दूसरा बच्चा कह दे कि चलो चलो मेरे घर पे चलो वहाँ खेल कर फिर आप घर चले जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बार अगर बच्चा अकेले जाता है तो उन्हें कहिए कि सीधे घर आइए, ठीक है। और रास्ते में किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत नहीं करनी चाहिए, ना कि उसके साथ कहीं जाना चाहिए। कोई व्यक्ति कुछ खाने को दे तो भी नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बच्चों को सिखाना चाहिए कि कोई चॉकलेट दे या कुछ भी दे मत लो, क्योंकि घर पे सब कुछ है, घर पे सब कुछ है, आप नहीं लीजिए किसी से। यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती कहीं ले जाना चाहे तो शोर मचाने के लिए कहिए बच्चों को और भागना चाहिए वहां से। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी बात अपने माता पिता या टीचर से छुपाना नहीं चाहिए। ये आप जरूर बच्चों को समझा दीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी बच्चों के साथ बहुत ऐसे हादसाएं हो जाते हैं जो बच्चे डर जाते हैं क्योंकि माता पिता कहते हैं कि नहीं नहीं ये फोकट की बातें आप क्यों कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है कभी, यू नो ऐसे ऐसे कह देते तो बच्चे फिर चुप रह जाते हैं, नहीं बताते हैं। मगर काफी हादसे ऐसे हो जाते हैं बच्चों के साथ और स्कूल में खास तौर से, तो बच्चों को चौकंदा कर दीजिए। ऐसा खैर, सो ये थे पारिवारिक विषय आज के लिए। इनमें से जो भी मोतियां आप चुनना चाहे चुन सकते हैं, जो आपको ठीक लगे ना। अगर आपको ना ठीक लगे, आप अपने ढंग से अपने बच्चों को जो भी समझाते हो तो वो भी बहुत ही बढ़िया है, मगर इनमें से कुछ भी आप यूज करना चाहे तो आप कर सकते हो, ताकि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो खतरों से बच सके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये थे पारिवारिक विषय आज के लिए। अगला गीत फिल्म हीरो से हमने इसे आपके लिए चुनकर लाए हैं आज, अनुराधा पोडवाल और मनहर के आवाज में, जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी पर फिल्माई गई है।

फिल्म हीरो का गीत आप सुन रहे थे, और बस एक और गीत और उसके बाद आपके लिए छोटी सी बातें, छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट में, ठीक है? तो इसे आप जरूर सुनिए, अपनों की सेगमेंट में हम लेकर आएंगे बस कुछ ही देर में। बस आज का मौसम बस बहुत ही नाइस सनी डे है ब्रिस्बेन में, 19 डिग्री अभी है, जो मध्य रात्रि तक लगभग 18 डिग्रीज हो जाएगी ना, मगर कल तो बस 25 डिग्रीज अच्छा ही होगा।

0: हाँ जी, बहुत ही बढ़िया सा नगमा, मुझे बहुत ही पसंद है। और चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी छोटी बातें अपनों की जो सेगमेंट है।
1: जितनी जिसके साथ ज्यादती करनी है कर लो, जितनी किसी के साथ बेईमानी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो। एक बात याद रखना, जिस दिन तकदीर ने पलटा खाया और तुम्हारे ही किए हुए कर्म तुम्हारे आगे आने शुरू हो जाएंगे ना, उस दिन मत घबराना, उस दिन मत परेशान होना। एक बात मेरी याद रखना, ये सर्कल घूमता है, ये टेबल घूमता है, और तकदीर की जो मार होती है ना वो बहुत बुरी होती है, ये याद रखना, यही जिंदगी का असूल है। जितनी जिसके साथ ज्यादती करनी है कर लो, जितनी किसी के साथ बेईमानी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो। एक बात याद रखना, जिस दिन तकदीर ने पलटा खाया और तुम्हारे ही किए हुए कर्म तुम्हारे आगे आने शुरू हो जाएंगे ना, उस दिन मत घबराना, उस दिन मत परेशान होना। एक बात मेरी याद रखना, ये सर्कल घूमता है, ये टेबल घूमता है, और तकदीर की जो मार होती है ना वो बहुत बुरी होती है, ये याद रखना, यही जिंदगी का असूल है।
0: जितनी हाँ जी, लव्स कम पड़ जाते हैं जब जज्बात गहरे होते हैं। पुरानी धुनों के साए हमेशा दिल पर सुनहरे होते हैं। खो जाइए सुरों की इस मखमली समंदर में, क्योंकि इन गानों पर यादों के पहरे होते हैं। शुरू करते हैं।

0: सुबह से शाम तक
1: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी
0: शाम से रात्रि तक
1: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग
2: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
0: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
3: हिल मत चिल
2: अरे बगैर हिल चिल कैसे होगा
3: या
2: ओके सॉफ्ट
3: सॉफ्ट या लाउड या

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: हाँ जी, देखिए अगर आप अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बेशक आप कांटेक्ट कीजिए एंजेला पूरन को, वो आपको मदद करेगी और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में बेशक मदद करेगी।
3: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: हाँ जी, देखिए बहुत स्पॉन्सर्स आते हैं रेडियो ब्रिजवानी के पास, आप भी अपना बिजनेस लेकर उनके पास जाइए और ऑफ कोर्स मदद करेंगे।
4: सेंडिंग अ डिजिटल टॉप अप टू लव्ड वंस इन फिजी इज सुपर इजी। केवल अपने नियरेस्ट डेयरी, सुपरमार्केट और पेट्रोल स्टेशन पहुंचिए और खरीदिए 10, 20, 30 या $50 टॉप अप। आप वेबसाइट www.digicelinternational.com विजिट भी कर सकते हैं। डिजिटल टॉप अप अपने फैमिली को फिजी देने के लिए। पैसा भेजने के लिए आवर पार्टनर क्लिक एक्सप्रेस पिक इज द इजिएस्ट वे टू सेंड मनी टू डिजिसेल फिजी। केवल आपको रजिस्टर होना है एट www.clickexpresspic.com पर। डिजिसेल, वी आर बेटर टुगेदर।
2: हाँ जी, आप सुन रहे हैं ऑफ कोर्स एक रंगीन शाम आपके नाम, रेडियो ब्रिजवानी के माध्यम से। हर रविवार को मैं आती हूँ आपका साथ देने के लिए। और हाँ जी, लास्ट वीकेंड में नहीं आ पाई थी, उसके लिए माफी, मगर चलो
5: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
6: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
5: अच्छा, वो क्या?
6: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
5: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
6: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: हाँ जी, ऐसे तो बहुत सारे स्पॉन्सरशिप हमारे पास आते हैं, आप भी अपना चाहिए तो ऑफ कोर्स कांटेक्ट कीजिए एंजेला पूरन को। रेडियो ब्रिजवानी के माध्यम से हम आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने की भरसक कोशिश करते हैं।

0: Thank you, brother. Thank you very much. Come on.
1: मुझे आज स्कूल में नहीं जाना
0: है. अरे क्यों?
1: नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता.
0: बेटी देखिए, आप कुछ दिन यहाँ रहिए, आपको अच्छा लगने लगेगा. और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ.
1: मैं दिल्ली में नहीं रह सकता.
0: नहीं, आपको यहीं रहना है हॉस्टल में कुछ दिन, समझे?

0: वेरी गुड।
1: चलो इसको हम यही छोड़ते हैं, हमारा समय बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। तो आज की जो हिंदी शब्द थी, इंग्लिश वर्ड जो मैंने आपको दी थी, स्प्रिंग, सो स्प्रिंग की जो हिंदी वर्ड है वो है वसंत। ठीक है, वसंत ऋतु से भी कहते हैं। और देखिए ये जो बहुत ही बढ़िया ये जो शब्द है, इसे ये हमारे सीजन के लिए होती है ना, तो स्प्रिंग, अभी विंटर के बाद में स्प्रिंग, तो ऐसे समय में फूल खिलते हैं और बहुत कुछ होते हैं, तो फूल का खिलना ये सब ऐसा समय में होता है। लोग प्लांट भी करते हैं, बल्ब वगैरह प्लांट करते हैं, तो धीरे धीरे ये सब उगता है। तो देखिए आप इसे बोल सकते हैं कि वसंत बहार बहुत ही सुहाना मौसम इस समय होता है, पेड़ पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया होती है, ऐसे ऐसे आप इसे सेंटेंस में बना सकते हो। तो हमारा तो समय बहुत ही कम है हमारे पास, तो इसीलिए मैंने जरा शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दी, मगर स्प्रिंग सीजन को हिंदी में वसंत ऋतु कहते हैं। अच्छा, सो आप इसे अपने तरह से सेंटेंस में बना सकते हो। और चलो अभी तो लगभग 4 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ एक और नगमा बजाने के लिए और फिर चलते चलते दूसरा। सो ये गीत मैं इसे, वैसे तो ये बहुत ही बढ़िया सॉन्ग किशोरदा

जी, बहुत ही बढ़िया सा नगमा, और इसी के साथ मैं रुख्सत ले रही हूँ। हमारे बाद में आ जाएंगी सताक्षी आपका साथ देने के लिए, मगर देखिए आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और समय कम पड़ जाते हैं और बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, मगर देखिए फिर भी मुझे पता है कि आप हमारा साथ हर बार देते ही रहते हो। तो इस गीत के साथ बस मैं यहाँ से रुख्सत ले रही हूँ, अगले रविवार को आपके साथ बेशक जुड़ जाऊंगी। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और औरों को खुश रहने का मौका जरूर दीजिए। ठीक।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीन प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: सर्गम म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स अ म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ महमूद रफी एंड आशा भोसले ऑन द 12th ऑफ सितंबर एट द लाइट हाउस कम्युनिटी सेंटर फॉरेस्ट लेक फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स फॉर टिकट्स कॉन्टैक्ट 04227

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवें घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: अमीरों की शादी है तो फंक्शनों की कमी नहीं होगी। वेलकम टू देसी सनडाउनर विद

0: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: सोचो कि ऐसे क्यूट स्माइल देने से मैं मान जाऊंगी।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: बेटा?
1: मामा,
0: सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
0: बहू को? अभी दो दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: दो दिन? दो साल जैसा नहीं लग रहा। और बारिश भी आने वाली है।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is
2: 0400-234-235. Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ओर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

ये कैसा नशा है, मैं किस खुमार में हूँ। तू आकर भी जा चुका है और मैं इंतजार में हूँ। आदाब नमस्कार जनाब, मैं तो बस अभी भी आया हूँ। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आपसे हर हफ्ते मिलना आप तो एक रिवायत की तरह हो गया है। जब आप और मैं पूरे हफ्ते जिंदगी की कश्मकश से जूझते रहते हैं तो दिल करता है काश सुकून के दो पल मिल जाए। तो जामीन, सुर और सांस तैयार है? अपने दिल पर हाथ रखिए और इस सुकून भरे सफर के लिए तैयार हो जाइए। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर निले। आपने ट्यून इन किया हुआ है रेडियो बिस्वानी और ये सुरीला सफर है गजलों का, जिसे हम कहते हैं कारवाए गजल। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। मोहब्बतों में अजब है दिलों का धड़का सा, कि जाने कौन कहां रास्ता बदल जाए। मिले हैं यूं तो बहुत, आओ अब मिलें यूं भी, कि रूह गर्मी इन्फास से पिघल जाए। हर एक लहजा यही आरजू यही हसरत, जो आग दिल में है वो शीर में भी ढल जाए।

अजाब ये भी किसी और पर नहीं आया कि एक उम्र चले और घर नहीं आया। इस एक ख्वाब की हसरत में जल बुझी आंखें, वो एक ख्वाब की अब तक नजर नहीं आया। आदाब ख्वातिन हजरात, मैं आपका रेडियो हम सफर नीला एक बार फिर से हाजिर हूं। हमारी जिंदगी कई रिश्तों के दायरों में बंधी होती है। उन रिश्तों में एक बड़ा ही पाक रिश्ता होता है दोस्ती का। हम अपने रिश्तेदार तो चुन नहीं सकते, पर हम दोस्त चुन सकते हैं जिनके साथ हम बेपर्दा होकर अपने दिल का हाल बयां कर सकते हैं। पर जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती। कई बार हम अपनी तरफ से जिसे अपना हमदर्द समझते हैं, वो भी कुछ ऐसा कह जाता है कि दिल जार जार हो जाता है। और ऐसे में मैं ये सोचता हूं कि नुकसान किसका हुआ, उस दोस्त का जिसने दगा दिया, या उसका जिसने पूरी शिद्दत से रिश्ता निभाया। तभी तो दिल कह उठता है कि हर एक बात को क्यों चुपचाप सुना जाए, कभी तो हौसला करके ना कहा जाए। सुनते रहिए कारवाई गजल, पेशे खिदमत है अगली गजल आप सभी के लिए। करें तो किससे करें ना रसाइयों का गिला, करें तो किससे करें ना रसाइयों का गिला, सफर तमाम हुआ हम सफर नहीं आया। दिल की बात बदन की जबां से कह देते, ये चाहते थे मगर दिल इधर नहीं आया। अजीब ही था मेरे दौर गुमराही का रफीक, बिछड़ गया तो कभी लौट कर नहीं आया।

उस बस्ती से छूटकर तो हर चेहरे को याद किया, जिससे थोड़ी सी अनबन थी वो अक्सर याद आया है। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल रेडियो ब्रिस्वानी पर। ऐसा कहते हैं जब आंख बंद कर दिल पर हाथ रखते हैं तो उसका चेहरा सबसे पहले जहन में आता है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पर एक बात बताता हूँ आपको, आमतौर पर जिसके साथ अनबन होती है आप उसे भी उतना ही याद करते हैं जितना किसी को प्यार में करते हैं, उसकी हर बात की तरफ नजर रखते हैं। क्योंकि हुजूर अनबन भी तो उन्हीं से होती है जिनसे प्यार आप करते हैं, क्योंकि जहां प्यार है वहीं तकरार भी है। उनके रूठने से जिंदगी में एक खालीपन सा आ जाता है ना, कुछ कमी सी महसूस होने लगती है, कुछ खलिश रह जाती है। चाहत भी है, सुकून भी है, दिलबरी भी है। चाहत भी है, सुकून भी है, दिलबरी भी है, आंखों में ख्वाब भी है, लबों पर हंसी भी है। दिल को नहीं है शिकायत किसी के साथ, यूं तो गुजर रहा है हर एक पल खुशी के साथ, फिर भी कोई कमी सी है क्यों जिंदगी के साथ। फिलहाल मैं आपके साथ हूं, आपका रेडियो हम सफर नीले, और आप सुन रहे हैं कारवाई गजल, आप रेडियो ब्रिस्वानी पर हैं। अजमतों के बोझ से घबरा गए, सर उठाया था कि ठोकर खा गए। कैद खाने से रिहाई यूं मिली, हौसले जंजीर को पिघला गए। एक नई उम्मीद के झोंके मेरे पांव के छालों को फिर सहला गए। उन बुतों में जान हमने डाल दी, दश्त तन्हाई में जो पथरा।

मोहब्बत के लिए खूबसूरत होने की कैसी शर्त? इश्क हो जाए तो सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है। ये बात आपने भी पहले सुनी होगी, पर कभी आपने इस पर गौर किया है कि ऐसा क्यों होता है कि इंसान को जब प्यार हो जाता है तो पूरी कायनात खूबसूरत लगने लगती है। मुझे लगता है कि जब आप खुश होते हैं, किसी दूसरे शख्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, अपने आप में ज्यादा गुम रहते हैं, तब आप किसी भी शख्स की बुराई या कमियों को बड़ी आसानी से दरकिनार कर देते हैं। जजमेंटल नहीं होते आप तब, क्योंकि आप दिल से खुश होते हैं। इसलिए जनाब, मेरा कहना मानिए, अपनी जिंदगी से मोहब्बत कीजिए, फिर देखिए ये दुनिया कितनी खूबसूरत लगेगी। वरना अभी जो पल है उसे खो देंगे और जिंदगी भर उसे खोजा करेंगे। सुनते रहिए कारवाई गजल अपने रेडियो हम सफर निले के साथ। अपनी नजर से कोई मुझे जगमगा गया, अपनी नजर से कोई मुझे जगमगा गया, महफिल में आज सबकी निगाहों में छा गया। कल तक तो इस हुजूम में मेरा कोई न था, लो आज हर कोई मुझे अपना बना गया। आता नहीं था कोई परिंदा भी आसपास, अब चांद खुद उतर के मेरी छत पे आ गया। जो दर्द मेरी जान पे रहता था रात दिन, वो दर्द मेरी जिंदगी के काम आ गया।

अनकही बातों को कहने से मिलेगा भी क्या, मेरा महबूब तो पत्थर है सुनेगा भी क्या। किस लिए करते हो तामीर हवाओं में महल, कोई ताहश्र जमाने में रहेगा भी क्या। गम की रुदाद मेरे चेहरे पे लिखी तो है, गम की रुदाद मेरे चेहरे पे लिखी तो है, लेकिन अफसोस कोई इसको पढ़ेगा भी क्या। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल। कुछ बातें जो अनकही हैं, हो सके तो वो कह दीजिए। जिंदगी तो एक धुआं है, सब फना हो जाएगा। आंखें बंद होने से पहले या दोस्त चल थोड़ी गुफ्तगू कर ले, वो बातें जो अनकही हैं, हो सके तो वो कह दे, बयां कर दीजिए जो दिल में है। क्योंकि मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस जिद की बात है। एक नादा सा दिल और ढेरों जज्बात है। जज्बात बयां करना, अपने दिल की बात कह देना बड़ा खूबसूरत है, पर उससे भी खूबसूरत वो एहसास है कि कोई है जो हमारी बात को और हमारे जज्बात को समझ रहा है, हमारी बातों के अधूरे सिरों को जोड़कर अनकही बात समझ जाए, खामोशी से बातें चुन सके और उनकी डोरी बनाकर आपकी तारीफ कर सके। मैं आपकी हर अनकही बात को समझ जाता हूं, इसीलिए कारवाएं गजल में आपके लिए गजलों और बेहतरीन नगमों का तोहफा लेकर आता हूं। सुनते रहिए रेडियो ब्रिजवानी पर गजले बहार, मैं हूं नीले आपके साथ।

कभी न कभी हर शख्स के जीवन में ये दौर आता होगा जब वो रोशनी से मुंह छुपाकर अंधेरे में चैन पाता होगा। मुश्किल दौर हर शख्स की जिंदगी का वो हिस्सा होता है जो हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है। वैसे देखा जाए तो हर शख्स की फितरत होती है कि वो हर पल में जिंदगी तलाश करता है, खुशी तलाश करता है। लेकिन जिंदगी खुशी के लम्हों के साथ गम के लम्हे भी समेटे हुए होती है, और गम के लम्हे ही होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपका हमदर्द कौन है, कौन है जो आपका हमसाया है। वो तब भी आपका साथ देता है जब आपका खुद का साया भी आपके साथ नहीं होता। ऐसा दोस्त, ऐसा साथी जिसे भी मिल जाए, उस पर परवरदिगार की रहमत होती है। अपनी नजर से उसने गिराया कहां कहां, जिसको इधर उधर से उठाया कहां कहां। घर में रहें या घर से हों बाहर, यहां वहां नजरों का नीर हमने छुपाया कहां कहां। ताउम्र हर सफर में दिया साथ किस तरह, अफसोस जिंदगी ने सताया कहां कहां। अब तो इसी मकाम से ये देखना भी है, चलता है मेरे साथ मैं साया कहां कहां।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ड ऑन ट्रस्ट।
2: दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर, याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

अनजाने हादसात का खटका लगा रहा, नींद आ रही थी रात मगर जागता रहा। वो सिर फेरी हवा थी आई गुजर गई, एक फूल था जो दिल की तरह कांपता रहा। आप सुन रहे कारवाई गजल, मैं हूं नीले आपके साथ। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इंसान को हर बात की जल्दी क्यों होती है? जब छोटे होते हैं हम, तब बड़े होने की जल्दी होती है, पढ़ते हैं तो कमाने की जल्दी होती है, कमाने लग पड़ते हैं तो जिंदगी को अगले मुकाम पर ले जाने की जल्दी होती है, और सच कहिए तो इस जल्दी जल्दी में जिंदगी जीना कहीं पीछे छूट जाता है। और यकीन मानिए, जब हम बड़े हो जाते हैं तो जब पूछा जाता है कि क्या चाहिए, तो खुदा से बचपना मांग लेते हैं हम। कैसी अजीब सी राय जिंदगी भी, जो गुजर गया उसे तलाश करती है और जो है उसकी कदर नहीं करती। इस महफिल की शमा को जलाए रखते हुए अगली गजल और नगमे पेश करते हुए आपसे कहूंगा कि बस मैं यूं गया और यूं आया। तब तक यर्ज किया आपके लिए कि मैं क्या था शाखे जर्द का एक बरगे खुश्क तर, निकला जो आंधियों से तो शोलों से जा मिला, मेरा ही रूप था जो पसे पर्दाए वजूद, नफरत से सारी उम्र मुझे देखता रहा, तेज आंधियों में गर्द सफर तक न बच सकी, तेज आंधियों में गर्द सफर तक न बच सकी, मत पूछ मुझसे अब मेरे दामन में क्या रहा, पानी के आर पार निगाहें न जा सकी, दरिया एक और भी तहे दरिया छुपा रहा।

प्यार कभी एक तरफा होता है ना होगा, दो रूहों के मिलन की जुड़वां पैदाइश है। ये प्यार अकेला नहीं जी सकता, जीता है तो दो लोगों में, मरता है तो दो लोगों में। आप हैं अपने रेडियो हम सफर निले के साथ। वैसे देखा जाए तो एक तरफा प्यार भी प्यार ही होता है, उसमें भी तड़पन होती है, दर्द होता है। लेकिन एक बात जरूर है, वो शख्स हमेशा खुश दिखना चाहता है, वो जिसे चाहता है उसे जताना चाहता है कि उसके साथ होने से कितनी खुशी मिलती है उसे। प्यार में रूठना मनाना तकरार होती है, पर एक तरफा प्यार में तकरार की जगह नहीं होती। दिल की बात हो, इजहार हो, इकरार हो, सभी बातों को संगीत के जरिए बखूबी बयां किया जा सकता है ना। संगीत में वो जादू है जो हर जख्म पर मरहम का काम करता है, हर टूटे दिल का सहारा बन जाता है संगीत। तो अब इस सुरीले सफर को आगे बढ़ाते हैं, सुनते रहिए कारवाई गजल। अपनी धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूं, अपनी धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूं, वो पिछली रुत के साथी अब के बरस मैं तन्हा हूं। तेरी गली में सारा दिन दुख के कंकर चुनता हूं, मुझसे आंख मिलाए कौन मैं तेरा आईना हूं, मेरा दिया जलाए कौन मैं तेरा खाली कमरा हूं। तू जीवन की भरी गली मैं जंगल का रास्ता हूं, अपनी लहर है अपना रोग दरिया हूं और प्यासा हूं, आती रुत मुझे रोएगी जाती रुत का झोंका हूं। अपनी धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूं।

अब आता नहीं मजा अफसाना ये गम सुनाने में, हमको खुदा से काम आ पड़ा आखिरी जमाने में। मंजिले इश्क को दरकिनार कर बेवफा रकीब के संग, रात गुजारी उसे मिलती अबद हमारे गम के पैमाने में। ख्वातीनों हजरात, आज मैं आपको अपनी एक मजेदार आदत के बारे में बताता हूँ। मैंने कई लोग देखे हैं जिन्हें कई तरह की चीजें इकट्ठी करने का शौक होता है। कई बार पुरानी चीजों को काफी लोग जमा करते हैं, अपने कलेक्शन को बढ़ाते हैं। मुझे भी कुछ इकट्ठा करने का शौक है। मैं लम्हे इकट्ठे करता हूँ, वो लम्हे जिनमें प्यार है, वो लम्हे जो प्यार से दोस्तों के साथ बिताए, सही मायने में जिए, कुछ अपने अपनों के साथ जिए, वो सब लम्हे मैं अपने दिल की संदूक में संजो कर रखता हूँ। और जब भी अकेला होता हूँ, अपनी इस लम्हे की संदूक को खोलता हूँ और खो जाता हूँ उन बातों में, उन लोगों में जो दिल के बड़े अजीज हैं, साथ ही मेरे उन लम्हों का हिस्सा हैं, एक खूबसूरत हिस्सा। मैं थोड़ा जज्बाती हो रहा हूँ शायद। आप बने रहिए रेडियो बिजवानी के साथ और सुनते रहिए कारवाएं गजल निलय के साथ। ये जानकर भी कि हमने मौत को गले लगा रखा है, खुदा मस्जिद में बैठा रहा आया नहीं हमारे आशियाने में। एक मुद्दत लगी मोहब्बत की जिस आग को सुलगाने में, उसे आया मजा झटके से बुझाने में। मेरे पांव को जो कांटे रंग न सके, उससे रंज कैसा, उम्र बीती जोशे इश्क को ये बात समझाने में।

किनारा मिला जो किनारा नहीं था, बहाना था कोई सहारा नहीं था, यही एक दिल जिसको समझे थे अपना, न जाने किसका था हमारा नहीं था। आप सुन रहे हैं कारवां गजल अपने रेडियो हम सफर निले के साथ। कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी नहीं होते जितना हम समझ लेते हैं। तभी कहते हैं कि जब कोई सामने से इग्नोर करने लगे या दिल कुछ और जवाब देने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि जिंदगी की राह में थोड़ा मुड़ने का टाइम आ गया है, रुक कर सोचने का टाइम आ गया है। वैसे भी जल्दी करके कोई क्या पा लेगा, थोड़ा रुक कर चलें तो धोखा शायद कम मिलेगा। अपनी किस्मत पे नाज करते गुरूर होता, गर उनके लबों से हमारा मस्कूर होता। गरचे मैंने छुपाया था राज़े दिल तुमसे, डर था तेरी निगाह में ये ना कसूर होता। कहना था पर न कहा इसमें खता मेरी थी, कहता दर्द हिजर भी जो न मजबूर होता।

देर तक हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और सुबह तो होने दो। आधे अधूरे ख्वाब जो पूरे ना हो सके, एक बार फिर से नींद में वो ख्वाब बोने दो। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल, में हूं आपके साथ। हर शख्स की जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब उसकी जिंदगी में ख्वाब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ख्वाबों से भरी जिंदगी में बड़ी सच्चाई होती है, बड़ी रूह होती है, बड़ी सोलफुल होती है ये जिंदगी। प्यार इंसान को ख्वाब देखना सिखाता है, ख्वाब की तामील हो ना हो। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि होठों पर लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम। बेहतर है कह दें अपने दिल की बात तो सुकून मिल जाए। नहीं, तुमने मुझे देखकर जाने किस तरह सोचा होगा, तुमने मुझे देखकर जाने किस तरह सोचा होगा, काश मैं शक्ल सूरत में थोड़ा और होता। खुदाया क्या हम न पाते अपनी मोहब्बत को, अगर हमें अपनी वकालत का शऊर होता। हम तुम मिल ही जाते किसी मोड़ पर एक रोज, जो इश्क में वसलत और कुर्ब का दस्तूर होता। है आलम में रंग नए पुराने यादों के, तुम भी होते परेशान तो मजा जरूर होता। बहुत तड़प तड़प के मैंने यह गजल लिखी है, काश मेरी किस्मत में जमाले हूर होता।

जरूरी नहीं है इश्क में बाहों के सहारे भी मिलें। जरूरी नहीं है इश्क में बाहों के सहारे भी मिलें, किसी को जी भर के महसूस करना भी मोहब्बत है। आप और हम जुड़े हुए हैं प्यार के बंधन में। देखा जाए तो प्यार और अनुराग में थोड़ा अंतर होता है। अनुराग में पैशन होता है, चीज को अपना बना लेने की जिद होती है। प्यार में बंधन नहीं होता, जिद नहीं होती। इसीलिए मेरा और आपका रिश्ता पाक है, क्योंकि इसमें किसी तरह की जिद नहीं है, सिर्फ अपना बना के रखने की जिद नहीं है। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल। ये सफर अब मुकम्मल होने को है। फिर होगी अगले हफ्ते मुलाकात अपने रेडियो हम सफर निले से। दीजिए मुझे इजाजत, बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। लेकिन जाते जाते कहूंगा कि कल की सोचो तो भली ही सोचो, सोच अच्छी है तो अच्छा होगा। रब्त का फल है, जरा सब्र रखो, वक्त के साथ ही मीठा होगा। एक ही शर्त पे बांटूंगा खुशी, तेरे गम में मेरा हिस्सा होगा। मेरी कोशिश है अमल उस पे करूं, मैंने गजलों में जो लिखा होगा। खुदा आपका मुहाफिज रहे। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: सर्जन म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स ए म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले ऑन द 12th ऑफ सितंबर एट द लाइटहाउस कम्युनिटी सेंटर फॉरेस्ट लेक फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स। फॉर टिकट्स कॉन्टैक्ट 04227358।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानूं लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असीं तुहानूं फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: ओए सब ठीक ठाक? चिट्ठियां लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता। वैसे आज 11 फरवरी है, तुझे याद भी?

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट. अतुल भारद्वाज जी है.

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीन प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे बीच मिस्टर एंड मिसेस पेस्टन जी अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। लेट्स गिव देम अ बिग हैंड।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026, फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।

0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: सरगुन म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स ए म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले ऑन द 12th ऑफ सितंबर एट द लाइट हाउस कम्युनिटी सेंटर फॉरेस्ट लेक फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स। फॉर टिकट्स कॉन्टैक्ट 04227

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आयरन फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीन प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हां असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हां असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल की अग तो बचाव की योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजा नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
1: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Re thari kismat na gulam likhe do hai. Rani gulam na nahi. Rajya na mila kare.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life.

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact प्रेरणा on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: Listen close what I gotta say, 'cause you know there ain't no other way. Love is the message, eh? Y'all ready? Let's go. Yeah.

जीवन बहुत खूबसूरत है। ये किसी धर्म, सीमा, जाति, उम्र या फिर देश में नहीं बटा है। जीवन तो जीवन है, जिसे जीने के लिए हम सब इस दुनिया में आए हैं। और हम सब यही चाहते हैं कि बहुत शांति के साथ, प्यार के साथ, अपनेपन के साथ हम जीवन जिए। हमें से कोई भी ये तो नहीं चाहता ना कि हमारी जिंदगी में लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, उत्पात हो या फिर आर्ग्यूमेंट्स हों। नहीं ना, हम सब खुशी खुशी रहना ही तो चाहते हैं। तो फिर हमारी ज़िंदगी में ये आर्ग्यूमेंट्स, ये लड़ाइयाँ, ये सब आता कहाँ से है? आइए आज मिलकर इसी पर विचार करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी आपके साथ। आज एक बार फिर से हमारे सफ़र जीवन आधार में, जीवन आधार में जुड़ेंगे हमारी बातों के साथ। लेकिन इस एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं जीवन आधार। जीवन के आधार को आज एक बार फिर से हम साथ समझने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हम सबके जीवन में सारा खेल विचारों का है। आपके थॉट्स जो हैं वो या तो आपको बना देते हैं या आपको बिगाड़ देते हैं। भगवान बुद्ध ने भी स्वयं यही तो कहा है कि जीवन में सारा खेल विचारों का है। आप चाहें तो अपने विचारों से अपनी किस्मत तक को बदल सकते हैं, आपकी जिंदगी में जो हो रहा है उन्हें बदल सकते हैं, आप अपने रिश्ते सुधार सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं। और यही विचार आप कोई अच्छे खासे करियर को खराब करके आपको मिटाने का भी काम करते हैं। तो खुद पर भरोसा रखिए और हमेशा अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रांग रखिए। इसी बात पर आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी।

रेडियो कुसवानी पर जिंदगी के नाजो नखरों से दूर खुद को, खुद की सच्चाई को और इस सृष्टि को जानने का सफर है जीवन आधार। इसी सफर में आज एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ। आइए जीवन आधार में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं अभी अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो कुसवानी।

अक्सर हम अपने आप को दूसरों की दृष्टि से देखते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, हम यही सोचते हैं ना। लेकिन आप दूसरों की दृष्टि में क्या हैं, वो आपको कैसे देखते हैं, आपको क्या समझते हैं, ये इम्पोर्टेंस रखता ही नहीं है, ये जीवन में महत्वपूर्ण है ही नहीं। जीवन में महत्वपूर्ण तो ये बात है कि आप अपनी दृष्टि में क्या हैं, आप खुद को कितना मानते हैं, आप खुद से कितना प्यार करते हैं, आप खुद को कितना अच्छे से जानते हैं और आप खुद की काबिलियत पर कितना भरोसा करते हैं, ये ज्यादा जरूरी है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो खुद को पहचानिए, दूसरों से अपनी पहचान की उम्मीद रखना बंद कीजिए। और आइए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर जीवन आधार।

खुद को जानने का और उस परम शक्ति से मिलने का जो इस सृष्टि का पालनहार है। ये सफर है जिसका नाम है जीवन आधार। जीवन आधार पर आज हम एक बार फिर से जिंदगी को, जीवन को इस सुबह समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सफर के साथ आगे बढ़ते हुए एक और गीत यहाँ पर सुनेंगे। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

कहते हैं कि आप जो विचार रखते हैं ना दोस्तों, वही आपके शब्द बनते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं ना वही हम करते हैं, और जो हम करते हैं वही तो हम बन जाते हैं। बात नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि अपने थॉट प्रोसेस पर हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं। अपने सोचे हुए को ही तो आप अंजाम देते हैं। अब देखिए ना, एक इंसान पूजा के पहले भी सोचता है और मर्डर करने के पहले भी सोचता है। कहने का मतलब है कि जो आप सोचते हैं वही तो आप बोलते हैं, और जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं फिर बोलते हैं, वही आपके एक्शंस होते हैं, वही काम आप करते हैं, यानी कि वही आपके कर्म बन जाते हैं, और जो कर्म आप करते हैं वो कर्म ही आपको बनाते हैं। इसलिए सबसे पहली शुरुआत अपनी सोच से कीजिए, अपनी सोच को अच्छा रखिए, जीवन अच्छा होता जाएगा। आइए एक और गाने के साथ बढ़ते हैं इसी जीवन के सफर में आगे, जीवन आधार में।

श्रोताओं, जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 107.0 AM पर। ये सफर जो है ये अपनों के साथ के साथ साथ उनका साथ निभाने का भी है जो हमारी जिंदगी में कोई नहीं है, जिन्हें हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन हम उनके भी हित को, उनके भी खुशियों को ध्यान में रखें और कर्म करें, यानी हम इंसान बने, इसी बात को ध्यान में रखने का सफर है जीवन आधार। आइए इसी सफर में आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

मन, कहते हैं मन बड़ा ही चंचल होता है दोस्तों, लेकिन ये मन बहुत जल्दी अपनी शांति भी छोड़ देता है। यानी किसी के बिहेवियर पर कई बार हमारा मन डिपेंड हो जाता है। लोगों का बिहेवियर अगर अच्छा रहा तो हमारा मन भी ठीक रहता है, अच्छा रहता है, खुश रहता है। लेकिन अगर लोगों का बिहेवियर हमारे लिए चेंज हुआ तो हमारा मन भी चेंज हो जाता है, विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के व्यवहार का असर आपके मन की शांति पर ना पड़े, वो जितना शांत है उतना ही रहे, विचलित ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं इसी बात पर एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

श्रोताओं, ये था एक और जीवन आधार का सफर रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर। जीवन आधार की एक और कड़ी के साथ कल सुबह होगी आपसे फिर से रेडियो प्रसवानी पर मुलाकात। आज के सफर से आप सताक्षी इजाजत चाहेगी। नमस्कार।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीन प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज लहंगा सलवार कमीज पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस इतना ही नहीं ओरिजिनल डीवीडीज सीडीज फोन कार्ड्स प्रीपेड चार्ज कार्ड्स फैंसी ज्वेलरी बैंगल्स गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट वोलन गैबा ओपन Daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store well known for its quality service and reasonable prices.

नमस्ते यदाब सत श्री अकाल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात ब्रिस्बेन। मंडे है यानी कि आज सोमवार है और अगर अलार्म ने आपको जगाया है तो समझ लीजिए लाइफ ने एक और चांस दिया है। तो चलिए कॉफी की फर्स्ट सिप लेते हैं, स्माइल को फेस पर लाते हैं और कहते हैं आज का दिन भाई मेरा है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। चलिए फिर कॉफी का फर्स्ट सिप लेकर अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आप चाहे घर पर हो, ऑफिस के लिए ड्राइव कर रहे हो या फिर अपनी मॉर्निंग वॉक एंजॉय कर रहे हो, ब्रिस्वानी के साथ आपकी सुबह होगी थोड़ी और कलरफुल। हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए प्रोग्राम शुरू करते हैं। और दोस्तों अपनी आवाज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, तो फिलहाल हम पूरी कोशिश करेंगे अपने इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर बनाने का। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम के इस गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक है जी रेडियो ब्रिस्वानी में, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम चाने का सफर, आपके अपने दोस्त और होस्ट आरजे चाने जैन के साथ। सो दोस्तों, एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिए, हर मंडे नई बिगनिंग नहीं होती, कभी कभी वही मंडे होता है जहां से आपकी लाइफ बदलनी शुरू होती है। इसीलिए जो काम आप कल तक पोस्टपोन कर रहे थे, शायद आज उसका फर्स्ट स्टेप लेने का एक परफेक्ट डे है। ब्रिस्बेन वालों, आज अपनी मॉर्निंग को एक सिंपल रूल के साथ स्टार्ट कीजिए। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ज्यादा ओवरथिंक मत कीजिए, किसी से कोई कंपैरिजन मत कीजिए और बेकार की स्ट्रेस मत लीजिए। किसी और की जर्नी देखकर अपनी स्पीड को हमेशा हमने जज नहीं करना है, क्योंकि हमारा टाइम, हमारी स्टोरी और हमारी जर्नी सब अलग है। वैसे आज सुबह आपकी कॉफी स्ट्रांग है या फिर मंडे की प्रॉब्लम्स, मुझे जरूर बताइएगा। रेडियो ब्रिस्बेन में आइए, सुनते हैं ये नेक्स्ट ट्रैक, उसके बाद

करते हैं ऑस्ट्रेलिया की कुछ अपडेट्स, न्यूज अपडेट्स, जानते हैं क्या कुछ हो रहा है क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन, क्या कुछ बातें आज हम शेयर करने वाले हैं। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बानी।

वेलकम बैक एच रेडियो ब्रिस्बेन में। तो आइए सबसे पहले ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड की कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट जान लेते हैं। क्वींसलैंड में पिछले दिनों अनयूजुअल हीट ने लोगों की टेंशन जो है वो बढ़ा दी है। ब्रिस्बेन ने 34.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया है, जो कि सितंबर का 2019 के बाद सबसे हॉट डे बताया जा रहा है। साउथ ईस्ट क्वींसलैंड के कुछ एरियाज में बुश फायर डेंजर भी बढ़ा है। आपको बता दें कि लॉकियर वैली में एक बुश फायर की वजह से वैरिगो हाईवे टेम्परली क्लोज करना पड़ा और कुछ रेजिडेंट्स ने सेफ्टी के लिए अपने होम्स छोड़े हैं। अथॉरिटीज ने फायर कंडीशंस को लेकर कॉशन की भी अपील की है। तो ब्रिस्बेन लिसनर्स, आप अगर बुश फायर प्रोन एरिया में हैं, लोकल इमरजेंसी अलर्ट्स को जरूर फॉलो कीजिए और अननेसेसरी रिस्क प्लीज मत लीजिएगा। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हीट के बाद मंडे को यानी कि आज ब्रिस्बेन में नोटिसेबल चेंज एक्सपेक्टेड है। फोरकास्ट में कूलर कंडीशंस की तरफ शिफ्ट दिख रहा है, विद टेम्परेचर्स अराउंड 8 डिग्री सेल्सियस मिनिमम और 19 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम के आसपास। मतलब वीकेंड की हीट के बाद मंडे मॉर्निंग यानी कि आज जैकेट की जरूरत भाई थोड़ी सी पड़ सकती है। सो ब्रिस्बेन, लेयर अप एंड स्टे कंफर्टेबल। इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

वहीं पे दोस्तों अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया न्यूज की, तो ऑस्ट्रेलिया में भी वेदर और फायर कंडीशंस इस वक्त जो है मेजर टॉकिंग पॉइंट में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 का विंटर ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कई कैपिटल सिटीज के लिए अनयूजुअली वार्म रहा और ब्रिस्बेन भी वार्मेस्ट विंटर्स में काउंट हुआ। स्प्रिंग ऑफिशियली आ चुका है लेकिन वेदर ने ब्रिस्बेन को अभी समर का ट्रेलर जो है वो दिखा ही दिया है। वहीं पर अगर स्पोर्ट्स अपडेट की बात करें तो स्पोर्ट्स लवर ऑस्ट्रेलिया के लिए बास्केटबॉल से भी गुड न्यूज ये है। ऑस्ट्रेलियन ओपल्स ने वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप में टर्की को बीट करके कंपटीशन के नेक्स्ट फेज में अपनी जगह सिक्योर कर ली है। ऑसी स्पोर्ट्स फैंस के लिए डेफिनेटली एक प्राउड मोमेंट है। जानेंगे थोड़ी देर बाद एंटरटेनमेंट गॉसिप में भाई क्या चर्चा है। सुनते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ ऑनलाइन रेडियो ब्रिस्बेन 89.3।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो बिस्वानी। सो अब थोड़ा ग्लैमर और एंटरटेनमेंट की बात करें तो सेलिब्रिटी वर्ल्ड में सोशल मीडिया रिलेशनशिप्स और न्यू प्रोजेक्ट्स की न्यूज ने फैंस को बिजी रखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के एंटरटेनमेंट मीडिया भी सेलिब्रिटीज के लेटेस्ट अपडेट्स, रेड कार्पेट मूवमेंट्स और टीवी मूवी न्यूज को क्लोजली फॉलो कर रही है। और एक इंटरेस्टिंग अपडेट है दोस्तों, डिज्नी प्लस ने सितंबर के लिए न्यू मूवीज और शोज की लाइनअप अनाउंस की है। तो अगर आज मंडे को काम के बाद डिज्नी प्लस मूड होना तो ऑप्शंस की कमी नहीं है दोस्तों। आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

चलिए दोस्तों, अब न्यूज से थोड़ा सा ब्रेक। मंडे को एक चीज मत कीजिएगा, अपनी एनर्जी ना दूसरों के मूड के हवाले मत कीजिएगा। किसी का बैड मूड आपका बैड मूड बनना जरूरी नहीं है। आज अपने लिए एक सिंपल प्रॉमिस कीजिए कि मैं आज अननेसेसरी नेगेटिविटी को ना अपने दिन का बॉस नहीं बनने दूंगी या दूंगा। सो दोस्तों, इसी के चलते कुछ विचार की बात करते हैं, यानी कि थॉट ऑफ द डे। यू डोंट नीड टू हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट, यू जस्ट नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। यानी कि कभी कभी पूरी जर्नी ना समझना जरूरी नहीं होता दोस्तों, बस नेक्स्ट स्टेप पता होना चाहिए और फिर वन स्टेप एट अ टाइम, फिर देखिए हर चीज कितनी बढ़िया होने वाली है। तो ब्रिस्बेन लेटेस्ट न्यूज से लेकर एंटरटेनमेंट, वेदर और मंडे मोटिवेशन तक, ये थी आपकी मॉर्निंग डोज ऑफ ब्रिस्वानी। तो याद रखिए, बैड डे हो सकता है बट बैड एटीट्यूड जरूरी नहीं है। स्माइल कीजिए, सेफ रहिए और अपना मंडे ब्यूटीफुल बनाइए। मैं मिलूंगी फिर थोड़ी देर में, यानी कि कल आप सभी के साथ म्यूजिक, मस्ती और फ्रेश अपडेट के साथ। सो आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी, कीप यू इन्फॉर्म्ड, एंटरटेन्ड एंड कनेक्टेड। गुड मॉर्निंग वंस अगेन ब्रिस्बेन, हैव अ सेफ, हैप्पी एंड ब्यूटीफुल मंडे। टेक केयर, बाय बाय।

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीज जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बाल विवाह रोकने के लिए भारत का वैश्विक नेतृत्व, यूएन में 27 नवंबर को घोषित हुआ विशेष दिवस। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव का सह प्रायोजन किया है। इसमें हर साल 27 नवंबर को बाल विवाह, प्रारंभिक और दुष्कर्मी विवाह के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 27 नवंबर 2024 को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य 2026 तक बाल विवाह के चलन को 10% तक कम करना और 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सियरा लियोन द्वारा प्रस्तुत बाल, प्रारंभिक और दुष्कर्मी विवाह के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस शीर्षक वाले प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया। अमेरिका से करोड़ों डॉलर की ठगी करने वाले टेक सीईओ पर एफबीआई ने कसा शिकंजा, मोस्ट वांटेड लिस्ट में किया शामिल। अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने धोखाधड़ी के मामले में सजा से पहले देश छोड़कर भागने वाले टेक कंपनी के सीईओ बर्नहार्ड यूजिन फ्रिट्स को अपनी मोस्ट वांटेड फ्रॉडस्टर्स सूची में शामिल कर लिया है। साथ ही भगोड़े सीईओ की जानकारी देने वाले को करीब 1.25 करोड़ रुपए तक का इनाम देने की घोषणा की गई है। मिस्र में टीवी एंकर सारा खलीफा को मौत की सजा, ड्रग्स साम्राज्य चलाने और अवैध हथियार रखने का पाया गया दोषी। मिस्र की एक अदालत ने जाने माने टीवी शो की एंकर सारा खलीफा और 11 अन्य लोगों को बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों के निर्माण और उनकी तस्करी के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है। 39 वर्षीय सारा खलीफा मिस्र के मिशन इम्पॉसिबल नाम का एक टीवी शो होस्ट करती थी, जो अपराध और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर आधारित था। टीवी पत्रकारिता के अलावा वो एक कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की मालकिन भी है। नेपाल त्रासदी में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 1344, 5000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता। नेपाल में आई फ्लड से मची तबाही में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 तक पहुंच गई है, जबकि 5000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल पुलिस और बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों से लगातार शव बरामद कर रहे हैं। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। दिल्ली बिल्डिंग हादसे के बाद जिंदगी की तलाश जारी, मलबे से कई छात्र कर रहे फोन। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में 5 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इमारत में कॉलेज के छात्र पीजी के तौर पर रह रहे थे। दक्षिण पश्चिम दिल्ली से भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने दावा किया कि मलबे में फंसे कुछ छात्रों ने फोन कर मदद मांगी है, हालांकि उन्होंने मलबे में फंसे छात्रों की सही संख्या की पुष्टि नहीं की है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गलत चित्रण नामंजूर, दुनिया के नए नक्शे पर भारत की यूएन को दो टू। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समान क्षेत्रफल वाले ग्लोबल मैप के समर्थन में मतदान तो किया है, लेकिन इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव किसी विशेष मानचित्र का समर्थन नहीं करता है और भारत के संप्रभु क्षेत्र को उसके आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दर्शाया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह प्रस्ताव किसी विशेष विश्व मानचित्र को न तो अपनाता है और न ही उसे प्रमाणित करता है, और न ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, विवादित क्षेत्रों या स्थानों के नामों सहित राजनीतिक मानचित्र कला पर कोई चर्चा की गई है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: on 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host, Amita and Jatish. सुबह का सफर आपके हम सफर जतीश और अमिता।
1: स्वागत है आप सभी का रेडियो बिस्माली पर। सभी का प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल,
2: नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हाउ इज एवरीबॉडी ऑन दिस ब्यूटिफुल मंडे मॉर्निंग। इट इज द 7th of September।
1: Yeah, it is certainly a beautiful morning, isn't it?
2: Yes, absolutely.
1: Yeah, yeah. Okay, let me get my this thing sorted out. Monday. Okay, Radio Biswani, आप सुन रहे दोस्तों, आप कितनी पहचान, और हम आ गए हैं, आप लोग भी आ गए हो, और यही उम्मीद है कि आप लोग हमें सुन पा रहे हो। Okay. आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं थोड़ा कुछ वेदर इन्फॉर्मेशन लेकर हम देख लेते हैं वेदर में क्या हो रहा है दोस्तों। और रेडियो बिजवानी ओके आज के लिए कहा गया है कि मॉर्निंग स्मोक रहेगा। व्हाट इज मॉर्निंग स्मोक? दैट्स द फर्स्ट वन। मॉर्निंग स्मोक,
2: स्मोक,
1: या
2: व्हाई स्मोक?
1: आई डोंट नो, somebody probably doesn't know, it might be foggy.
2: Oh no, maybe it's no, there is smoke in the air.
1: Is
2: that's
1: there?
2: For sure, yes, because of back burning and things, there's a lot of smoke in the
1: what
2: air
1: is
2: that burning? That is right, they when they do like back burning of certain areas.
1: Okay, so this come up to here. All right,
2: yeah.
1: 50 and 26 had no rain. Tomorrow calculate a shower or two clearing. 16 and 24. I love the way they say shower or two clearing. Hey. Wednesday, partly cloudy, 13 and 25. Thursday, shower or two, 15 and 23. Friday, shower or two, 13 and 23. Saturday, shower or two, 13 and 24. And Sunday, partly cloudy, 13 and 25 degrees.
2: Wow.
1: Yeah. So that's the...
2: Back to the warm weather again.
1: Well, it was hot yesterday.
2: Oh, it was.
1: Yeah. Wynnum Road, Cannon Hill, crash जो eastbound हुआ था ये अब clear हो गया है दोस्तों, been cleared, and that's about all. Okay, now
2: Ipswich Motorway and Centenary was very very jammed, very busy.
1: Okay.
2: I don't know if it's cleared up by now, but I'm just saying it was really.
1: Why was?
2: I don't know why, but it just quite full on.
1: Okay. All right.
2: ओके
1: तो चले दोस्तों देखते हैं न्यूज में क्या है और व्हाट इज हैपनिंग टुडे। ओके एबी, नथिंग इज गोइंग राइट।
2: ओके, हाउ अबाउट अ प्ले अ सॉन्ग?
1: व्हाई डोंट यू प्ले अ सॉन्ग एंड देन वी विल कम
2: एंड होपफुली यू पुट द थिंग राइट सो माय सॉन्ग विल आल्सो प्ले एंड देन वी विल गेट गोइंग। हाउ अबाउट दैट? Here we go.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
4: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 04302280009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
5: Leave inspired. I hope we inspire you guys, you know, so. You are inspired. Okay. All right. Number है 04300031701 दोस्तों, या स्टूडियो का नंबर है 3279-1701। कुछ भी सुनना चाहे, अगर कहना चाहते हैं आप दोस्तों, तो प्लीज डू गिव अस अ कॉल। ओके,
6: यस,
5: व्हाट एल्स इज हैपनिंग?

0: गाता रहे मेरा दिल, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। ओके चलिए दोस्तों, और कुछ रिक्वेस्ट भी है, अभी बजाएंगे कुछ ही देर में
1: अभी।
0: ओके या लेट्स प्ले इट।
1: यप
0: चलो दिया, दिस इज फॉर यू। और छोटी सी बच्ची है, गाना बहुत पसंद करती है, डांसिंग बहुत पसंद करती है, तो चलो सुनते हैं।

0: कुछ मिले जुले गीत अभी आप सुन रहे हैं और मैं देख रहा हूं हमारे इंटरनेट में बहुत से लोग आ गए, थैंक यू। और क्या रखेगा दोस्तों इस कार्यक्रम के बाद में सताक्षी के साथ, और फिर 11 बजे संदेश के साथ पंजाबी प्रोग्राम, 3 बजे आप हो जाएंगे निव्या के साथ, कार्यक्रम जरूर सुनिएगा। तो चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सुनते हैं गीत।
1: ओके, दिस इज समथिंग

0: दोस्तों अभी कॉल आया था, हम बातें कर रहे थे और कुछ मैरिज पर बातचीत हो रही थी। और चलो तो जनरली देखिए, जो मैरिज है, अनहैप्पीनेस इज ऑफन लेस अबाउट अ लैक ऑफ लव एंड मोर अबाउट अ लैक ऑफ कनेक्शन। टू पीपल माई स्टिल केयर फॉर ईच अदर, बट द फ्रेंडशिप अफेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग दैट ब्रॉट देम टुगेदर कैन ग्रेजुअली फेड। वन इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट पीपल समटाइम्स एक्सपेक्ट मैरिज टू मेक देम हैप्पी, when happiness also depends on their own health, purposes, friendship and outlook. A spouse can support someone's happiness but cannot be responsible for all of it. ठीक है? Long marriages can face a particular challenge after retirement. When work and children no longer provide the same daily structure, couples spend more time together and may discover they have different interests or expectations. Some become closer, others feel they have a little in common. Having both shared activities and individual interests can make a real difference. The strongest marriages often rely on simple habits: listening without immediately defending yourself, expressing appreciation, laughing together, allowing each other personal space, and resolving disagreements before resentment builds. A thought worth remembering is, a successful marriage is not about finding someone who makes every day perfect. It is about two people who continue choosing kindness, respect and companionship even when life is imperfect. ठीक है, तो थोड़ा कुछ आपको बताया। वैसे तो बहुत कुछ है कहने को मैरिज पर। जैसे कि सम पीपल आर अनहैप्पी इन द मैरिज बिकॉज द रिलेशनशिप दे होप फॉर एंड द रिलेशनशिप दे आर लिविंग इन हैव बिकम डिफरेंट। इट इज रेयरली कॉज बाय जस्ट वन थिंग एंड समटाइम्स बोथ पार्टनर्स आर गुड पीपल हु हैव सिंपली ग्रोन अपार्ट। कॉमन रीजन इंक्लूड पुअर कम्युनिकेशन, फीलिंग अनअप्रिशिएटेड, फाइनेंशियल प्रेशर्स, disagreement about children or family, lack of intimacy, and different expectations of what marriage should be. Sometimes one partner feels they are giving much more than they receive. Over time, small disappointments can turn into resentment if they are never discussed. Another important reason is that people change. The person someone married at 25 may have different needs, interests, and priorities at 55 or 70. A marriage needs to grow with those changes. When couples stop being curious about each other, they can begin to feel lonely even while living in the same house. There are also more serious causes such as betrayal, controlling behavior, addiction, or emotional and physical abuse. In those situations, unhappiness is not simply a communication problem, and safety and appropriate support matter.
1: Yep.
0: अगर आपके घर में ऐसे domestic trouble हो रहा है, तो you do take action. A happy marriage does not mean two people never disagree. It means they can disagree without losing respect, feel safe behind themselves, being themselves, and continue to show care through ordinary daily actions. Sometimes a sincere conversation or marriage counseling can help rebuild that connection. Other times people discover that the relationship cannot meet the needs. Okay? So, ये सब बातें हैं, बहुत complex situation है दोस्तों। तो हंडी जब रहेगा साथ में तो थोड़ा भी वो होगा तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो इसी तरह से आप सोचिए, बहुत कुछ आपको शेयर करना पड़ता है और आपका लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा जब आप शादी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, सो ओके, बट देर आर ऑल्सो गुड थिंग्स अबाउट मैरिज, इज़न्ट इट?
1: यस,
0: या ओके।

0: ये गाना उन लोगों के लिए था जो अभी हाल ही जल में शादी वादी किए हैं, यू नो, दिस सॉन्ग इज नॉट रेलेवेंट फॉर एवरीबॉडी.
1: नो नो,
0: ये समझ गए जी. हाँ, तेरे मेरे ये मिलन की रैना, रैना का मतलब रात, और एक फूल या
1: गुल खिला, नया गुल,
0: तो समझ जाइए. तो चलिए आगे. शोभा जी,
1: कैसे हैं? मेबी फॉर द ओल्डर पीपल दिस वन कुड वर्क.
0: ओके, नाउ यू प्ले फॉर समथिंग ओल्डर पीपल. हां,
1: यस.

0: हमारा रिश्ता सिर्फ इस जिंदगी तक सीमित नहीं है, ये एक ऐसा साथ है जो हर जन्म में बना रहे। हैप्पी मैरिज, नॉट मेरली लिविंग टुगेदर बट विशिंग टू रिमेन ईच अदर्स कंपेनियन थ्रू एवरी सीजन ऑफ लाइफ, इन एवरी लाइफ। सुनने में तो अच्छा, लेकिन शायद प्रैक्टिकल नहीं होगा बहुत।
1: I was just going to ask, can you put that into practice?
0: जन्म जन्म का साथ है दोस्तों,
1: जन्म जन्म का
0: निभाने को सो सो बार हमने जन्म लिए। पिछले जन्म में क्या हुआ था कैसे इनको मालूम है?
1: How do we know that?
0: How do we know कि पिछले जन्म में क्या किया था आपने, क्या हुआ था, किससे प्यार किया था? ये तो खाली सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ यू नो, इट्स अ पोएटिक थिंग। जन्म जन्म का साथ है निभाने को सो सो बार हमने जन्म लिए। सो चलो आगे बढ़ते, कैन वी मूव ऑन सो आई कैन गेट आउट ऑफ दिस?
1: वी विल ट्राई,
0: आई सी हाउ टाइम टू गेट आउट ऑफ इट।
2: साल पहले मुझे तुमसे प्यार था।
0: What's wrong with you? अब हो गया 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा।

0: पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी अमिता दैट वी हैव टू गो।
3: आई डोंट नो व्हाट यू वर थिंकिंग।
2: आई डोंट नो। एनीवे दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप सभी ने साथ दिया और अब यहां से हमें हम दोनों जा रहे हैं और कल फिर वापस आएंगे
3: जी।
2: ओके, और अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।
3: नमस्ते एवरीवन,
2: बी हैप्पी,
3: ब्यूटीफुल डे।
2: या बी हैप्पी, लव द इंडिविजुअलिटी यू हैव अमंगस्ट योरसेल्फ।
3: यस,
2: ओके।

बाबू मुशाए, क्या हाल, क्या चाल, क्या जज्बात, क्या इमोशंस, कैसा गुजरने वाला है आज का दिन। देखिए बहुत ज़रूरी है सुबह ही सुबह की प्लानिंग कर ली जाए। हाँ बहुत मज़ेदार गुजरता है अगर हर एक चीज़ आप प्लान करके चलें। हाँ बहुत सारी चीज़ें आपकी प्लान के अगेंस्ट भी जाएंगी, ज़रूर जाएंगी, लेकिन कम से कम आपका दिन तो मैनेज हो पाएगा ना। तो चलिए इस दिन को आज थोड़ा सा मैनेज करते हैं, कुछ अपने साथ कुछ अपने प्लान्स के साथ। नमस्कार, मैं हूँ सताक्षी, रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर एक बार आज फिर से और आपके लिए लेकर आई हूँ आपका इट हैपेंस। आई नो आप बहुत वेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे जब मैसेजेस मुझे मिलते हैं ना आप लोगों के, यार मजा आ जाता है, समझ में आता है कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं हमसे और इस मॉर्निंग के साथ से। चलिए फिर शुरू करते हैं इट हैपेंस, अगले ट्रैक के साथ बढ़ेंगे आगे। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी।

वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग उन सभी को जिन्होंने अभी अभी बस रेडियो प्रसानी को ट्यून इन किया है। आप सुन रहे हैं मेरे साथ इट हैपेंस, आपका अपना ब्रेकफास्ट शो। और इट हैपेंस में आज आगे बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे, लेकिन जरा उन्हें विश कर दिया जाए ना जिनका आज स्पेशल डे है। भाई आपके बर्थडे पर आपको विश किया था, आपके स्पेशल डे पर आपको विश किया था, तो उनका भी तो राइट बनता है ना। तो भाई आज जिनका बर्थडे है, जिनकी जिंदगी में कुछ खास होने वाला है, जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, उन सभी को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक। और जिनकी शादी की सालगिरह है, भाई साहब रोज काम करते हैं, आज जरा ब्रेक लेके बीवी को थोड़ा घुमा फिरा दीजिए, उससे बताइए कि आपको भी उससे मोहब्बत है। अच्छा, शादी के बाद लोगों को ये लगता है ना कि अब क्या ही करेंगे घूम के, अब तो यार की जिम्मेदारियां हैं। भाई साहब हर एक दिन ना अपने प्यार को जताना पड़ता है, इसलिए नहीं कि वो बंदा या वो बंदी आपसे दूर भाग जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। अब तो बंधन बन ही गया है ना, वैसे जमाना ये भी है भाई, देखिए हो सकता है ना, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जिंदगी में और आपकी मोहब्बत में, आपके रिश्ते में फ्रेशनेस चाहिए तो जताना जरूरी होता है। अच्छा भाई, जिनका बर्थडे है, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारा आज गोल सेट तो आपने कर लिए, लेकिन उन गोल्स की तरफ बढ़ना भी आपको पड़ेगा। मेरी विश इतनी जरूर है आपके लिए, और मुझे लगता है कि इतना ही विश करना चाहिए कि आप जो भी मेहनत करें उसमें आपको सक्सेस मिले, 100% मिले आपका। चलिए फिर इसी विश के साथ आप सबके नाम प्ले करते हैं ये अगला ट्रैक, एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रसवानी पर।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

छपन सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो 1701 AM पर। यू नो, मुझे क्या लगता है कि मैं लोगों से थोड़ी सी अलग हूँ। अब मुझे अपने हिस्से की खुशियाँ ज़्यादा प्यारी हैं। दूसरों को खुश करने का, दूसरों को मनाने का अब उतना ज़्यादा दिल नहीं करता है। बस अपने लोग और उनके साथ मिलने वाला वो सुकून जिसको शायद इंसान पूरी जिंदगी खोजता और ढूंढता है। छोटी छोटी सी खुशियों में अब मुझे खुशी मिल जाती है। छोटी छोटी सी बातें अब मुझे समझ में आ जाती हैं। अब दूसरों को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करती घूमती हूँ, क्योंकि शायद उनकी जिंदगी में जगह बनाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अपनी खुद की जिंदगी को समझना है। और शायद इसीलिए अपनी वाली जिंदगी लोग ढूंढते फिरते हैं। और ये अपनी वाली जिंदगी जो है, ये मुझे मिली है अपने सुकून के साथ, अपने आप के साथ, अपने छोटे से घर में अपने अपनों के साथ। और इसी जिंदगी को आइए सलाम करते हैं। अगर आप भी इस जिंदगी को एक्सपीरियंस कर पाए हैं या कर रहे हैं तो आपके नाम भी ये ट्रैक है। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रिस्वानी आपके साथ, सताक्षी है और आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

0: हम फ्यूचर के बारे में इतना सोचते रहते हैं कि आज का दिन कब निकल जाता है ये पता ही नहीं चलता है। कल क्या होगा, कल कैसे होगा, सब ठीक होगा कि नहीं, कैसे मैनेज होगा, ये सब कुछ फील करते करते वक्त कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं सबसे ज्यादा जो अभी मेरे पास है उस पर कॉन्सेंट्रेट करूंगी। जो कल मिलने वाला है उसके चक्कर में हम अपना आज जीना भूल जा रहे हैं, हम अपना आज जीना भूल जा रहे हैं, हम आज को ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारी जिंदगी निकल रही है इस फ्यूचर के चक्कर में, और फ्यूचर हमारे हाथ कब आएगा ये तो हमें भी नहीं पता। सो इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आज पर फोकस करूंगी, इस पल पर जो इस वक्त मेरे पास है। एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्थानी 1701 AM।
1: नजर

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीन प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: सरगुन म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स ए म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले ऑन द 12th ऑफ सितंबर एट द लाइट हाउस कम्युनिटी सेंटर फॉरेस्ट लेक From 5 p.m. onwards. For tickets, contact 04227.

गानों की हैट्रिक एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ आपकी अपनी रेडियो प्रिस्वानी पर। गानों की हैट्रिक के इस अगले ट्रैक के साथ आपको आगे लेकर चल रही हूँ। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रिस्वानी 107.01 FM।

0: आज के तीन बैक टू बैक ट्रैक्स के गानों की हैट्रिक का लास्ट ट्रैक आपके लिए प्ले होने जा रहा है। एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, बस इस गाने के उस पार शुरू करते हैं। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसवाणी।
1: Take it away!

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804

कभी सोचा है कि आपकी एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके लिए इतनी बड़ी टेंशन क्यों बन जाती है? ऑफ कोर्स नहीं सोचा होगा। मैं बताती हूँ, हमारी जिंदगी में जब भी कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब हम लो फील करते हैं, हम क्या करते हैं, जितने लोगों को हम जानते हैं, जितने लोगों से हम मिलते हैं, हम उनके साथ उस बारे में बात करते हैं। अब होता क्या है, हर कोई हमें अपने हिसाब से सजेशन देता है। ज्यादातर लोग आपसे ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, ऐसा होता रहता है, नहीं कहते लोग। लोग आपकी उस प्रॉब्लम को धीरे धीरे करके और बड़ा बनाते हैं और आपको और बड़ा करके बताते हैं। अब होता ये है ऐसे में कि आपको अपनी वो छोटी सी प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी लगने लगती है। हाँ, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है भाई कि जरा ख्याल रखिए अपना, और अपनी प्रॉब्लम को जितना, अपनी बात को जितना आप अपने पास रखेंगे ना, क्योंकि छोटी सी बात जिसका कोई मतलब नहीं है वो भी आपके लिए परेशानी का सबब बन जाती है। तो जितनी कम बातें दूसरों से शेयर करेंगे, जितना आप अपनी बातों को अपने पास रखेंगे, उतना ही आपकी जिंदगी में खुशियां ज्यादा और टेंशन कम होगी। आइए एक और ट्रैक मेरे साथ सुनिए। उनके नाम है ये जो अपनी बातों को जल्दी शेयर नहीं करते हैं, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक उन्हें किसी पर भरोसा ना हो या कोई उनका अपना ना हो। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्फानी, मेरे साथ एंजॉय करते रहिए। ठापन्स।

अच्छा, यूं तो आप सुबह सुबह जब उठते हैं तो आप कॉफी और चाय पीते हैं, लेकिन स्पेशली बात करूंगी अभी हाउसवाइफ से। जी हाँ, जो लेडीज घर के कामों को ही निपटाते निपटाते अपना पूरा दिन स्पेंड कर देती हैं, उनसे जरा भी मुखातिब होती हूँ। और उनके लिए ना 11 बजे वाली जो कॉफी और चाय होती है वो आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। देखिए, वक्त होता है जब हस्बैंड्स और बच्चे स्कूल जा, मतलब हस्बैंड ऑफिस ऑफकोर्स और बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं, है ना। मेड भी घर का काम फिनिश कर चुकी होती है, वो भी जा चुकी होती है लगभग। घर का जितना कचरा है वो भी बाहर निकल चुका होता है, और कपड़े धुल चुके होते हैं या मशीन में पड़ चुके होते हैं, आपका सारा घर साफ हो चुका होता है। और इस वक्त ये मान के चलिए कि करीब 70% जो दिन का काम है आपका वो आप निपटा चुके होते हैं। लंच की तैयारी हो चुकी होती है, ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो चुकी होती है। और जिनके यहाँ लंच सुबह बन जाता है, हस्बैंड लेकर के जाते हैं घर से, उनके यहाँ तो भाई ये भी काम खत्म हो जाता है। सो ये वो वक्त होता है जब आप पीते हैं सुकून वाली कॉफी। और लेडीज के लिए ये कॉफी ना किसी जन्नत से कम नहीं होती है। मॉर्निंग की चाय, मॉर्निंग की कॉफी जो है वो भागते दौड़ते, बच्चों को रेडी करना है, टिफिन बनाना है, इन सब में वो कॉफी, वो चाय ठंडी हो जाती है। लेकिन इस वक्त ना ये सुकून जो होता है ये लाजवाब होता है। और कई लेडीज को मैंने देखा है, जनरली तो वो सबसे पूछ कर चाय बनाती हैं कि भाई कौन कौन पिएगा, लेकिन इस वक्त तक उनको अपना सुकून चाहिए। और बहुत ज़रूरी है लाइफ में अपने सुकून के लम्हों को ढूंढना। मैं बात करती हूँ आपसे कि अपना वाला जो टाइम है वो ज़रूर निकालिए। हाँ, तो हमारी जो घर पे काम करने वाली, घर का सारा काम निपटाने वाली और घर को संभालने वाली जो होम मेकर्स हैं, यार ये वाली चाय तो आई थिंक आप मिस नहीं करती होंगी। और आपके नाम खास तौर से ये अगला ट्रैक है, एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्फानी पर सताक्षी।